0: चाकर लगे चाकर नाले दरबार गल्ला करे कनेरिया किस्म ना पाए साग आप गवाए सेवा करे पक्ष पाए मान नानक जिसनों लगा जिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जियो सो गुए मौका कया वाओ बीजा बिख मंगा अमृत देखो ए हो न्याओ महला दूजा नाल याने दोस्ती करना वेरा जी हा जाने ते हो वरता वेखो को निर्जास महला दूजा
0: वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी हो गए पास सब से ती उपने चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ हो गए नानक सिरत विगास महला दूजा
1: नाल याने दोस्ती बड़ा रूसन पानी अंदर लेके जो तिसदा थान थियो महला दूजा
0: होए आरा करे कम आमना सत्य राज जे एक अचंगी करे।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आपने जो भारत की नींव डाली गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और आज भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशनार्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाभान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पठानकोट और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:05 होए ने गांधी चर्चा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा 9870 किलोहर्ट्ज़ से तय खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेशा भगत करम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो अॻिते प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कयूं वेंदियूं। इन ते प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत करम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

नाम साहबजन जी सदाबहार आवाज में कलाम दी रही आकाशवाणी जी सिंधी सरसाए हर पेश आहे तबसरो मंगल डेयरे हैदराबाद में ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जी

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी।

सही रोखे खबर कड़ी सामने प्रोग्राम खड़ी करें अवान जी किस्मत में एक दफो बीहर का हाजिर थे सब सुबह जो पानी पाकिस्तान गैर कानूनी तौर खड़ी रहा है जैसा सिंधन के जका तकलीफ पेश पैजी रही है सिंधवास के तैसा वाबस्ता एडिटोरियल शायद हुआ सिंध एक्सप्रेस में जैसे उनवान है जलालपुर कैनाल वसीले सिंधु के लगंदड़ धारो लिखल सिंध की तारीख तहजीब ए मैशत जो बुनियाद सिंधु दरिया है जैसे इन दरिया के बहकर में रिकॉर्ड पैदा कई वही है तो इन जहा असर फकत फसल तीन महदूद को पर लखे मान रोजगार मैशत ए मुस्कबिल पवन था सिंधु दरिया के सुकायण उन डैम ए कैनाल अडन पंजाब पैंजो हक समझी वेठो है सिंधे खर्चन एतराजन के लिखे में को आने ताजो जलालपुर कैनाल के खोलने वाले फैसले सिंध के अंदेशन के बीहर दुरुस्त साबित किया है जैसे सिंध सिंध आबादगार बोर्ड सख्त एतराज वरतो है बबरलो बायपास से लगल इतिहासिक धरने का वफाकी हुकूमत सिंध के खातिर कराई है तो सूबे की रजामंदी का को भी नौ कैनाल अमल में को आने वो इन खातिर का प्रोटेस्ट खत्म थे पर हाँ जलालपुर कैनल के खोलने से यो तासिर मजबूत थो है तो कैल आबादन से सरकार अमल को कन्दी है एडिटोरियल में अगते लिखल है कि पानी के खोट जहा नतीजा सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में साफ नजर अची रहा घणे वाहन ए शाखन में पानी न सब आबादगार परेशान है जलालपुर कैनल की अडावत खिलाफ सजे सिंध में प्रोटेस्ट धरना रैलियो इन गाल जो सबूत है तो पानी जो बहरान एक इंतजामी मसलो न है पर हाँ मानी की जिंदगी रोजगार ए जरिए पैदावार जो सवाल है जैसे वक्त सिर पानी न पौतो तो हजार एकड़ जमीन आबाद थे बदरा बंजर थी वी जरिए मैशत के नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचो कोटरी बैराज का हेठ सिंधु दरिया में पानी न सबब पहुंचण सबब समुंड चार तेजी से अगत बधी रो है समुंड जरिए जमीन बेला ए मिठे पानी जहा वसीला गिड़काय रो है एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का चवण है कोटरी बैराज का हेठ मुकर्र मकदार में पानी न छण से छड़ न फकत जरिए जरूरत है पर माहौलियाती तोजन बरकरार रखने पर लाजमी है जैसे पानी न छड़ो वो तो सिंध के जरिए नुकसान से गड माहौलियाती तबाही थी पानी की विरछ कें सूबे से एहसान करने जो मामलो न बल्कि यो एक आईनी कानूनी ए बैनल सूबाई महादन के लागापियल कौमी जिम्मेवारी है सिंध के पैं हिस्से जो पानी बिल्कुल मिलन घुर्जे कें भी सूरत हाल में मिलन घुर्जे ए कोटरी बैराज का हेठ घुरबल मकदार में पानी छड़न घुर्जे सिंधवास जो जिंदा रहन मुश्किल थी पवन और सिंध एक्सप्रेस में शायद थे एडिटोरियल बुधरी जिनों टाइटल हो जलालपुर कैनल वसीले सिंधु के लगंदड़ भाड़ो।

असल सिंध में तेज़ मींहं सबबि जेके हालतूं बदतर थी वियूं तंहिं सां बाबति सां एडिटोरियल शायदि थियो आहे सिंध एक्सप्रेस में, जंहिंमें लिखियलु आहे बरसाति खां अॻु उपाउ वठण जी घुर्ज। लेकिन असां तोड़े मुल्क में बरसातियूं वसण जो सिलसिलो शुरू आहे। बरसाति वसण खां फितरती ॻाल्हि आहे, पर असां वटि बरसाति पवण खां पोइ शहर जी ज़िंदगी एतिरे क़दुर मुतासिर थी वेंदी आहे जो आम माण्हू लाइ पंहिंजे वहिंवार खे बरक़रार रखणु ॾुखियो थी पवंदो आहे। शहरनि में जिते इंफ्रास्ट्रक्चर कोन्हे, जिते पाणी जे निकाल जो सिस्टम सुठो न आहे, उते बरसातुनि दौरान हालतूं बदतरीन थी वञनि। नतीजे में शहरनि जो घरां निकिरणु महाल थो थी वञे ऐं सदन घर में पाणी घुसी थो अचे, जंहिं करे घर में रहण पिण सदन लाइ ॾुखियो थो थी पवे। सिंध में ॿ ॾींहं जेका लगातार बरसाति पई, तंहिंजे करे शहरी ज़िंदगी तमामु घणी मुतासिर थी। हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास जहिड़ा ख़ासि शहर पिण बरसाति खां पोइ घणा ई मुतासिर थी विया, छो जो इन्हनि शहरनि में पाणी जो निकाल जो सिस्टम बराबरि न आहे। नई पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम त सभु लॻायो वियो आहे, पर पोइ बि बरसाति में इहे नाकाम आहिनि। ताज़ो बरसातियुनि हैदराबाद, डंडो जाम, डंडो मोहम्मद खान, मिठे ऐं उमरकोट इहे सभु शहर ॿुॾी विया। खपरो ऐं किनरे में रोड रस्तनि ते घोड़े जहिड़ो पाणी बीहजी वियो। के माण्हू ॿारहं सूदो फोत पण थी विया। अक्सर बरसाति में माण्हू हादसनि जो शिकार थींदा आहिनि, कॾहिं किथे पाणी बीठल हूंदा, किथे बिजली जे करे, त किथे कंहिं वण जे पाड़सूदो पटिजी अचणु सबबि। तंहिं करे सभिनी समूरनि शहरनि खे बरसाति दौरान अहिड़ो हुअणु घुर्जे जो पाणी किथे बीहे न ऐं कंहिं मासूम ज़िंदगी जो नुक़सान न थिए। हिते असां हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे जो असांजा इंतज़ामी इदारा बरसाति वसण खां पोइ हाय घोड़ा कंदा आहिनि ऐं बरसाति जे तबाही कारण खां बचण लाइ इंतज़ामी इदारनि खे अॻुवाट एतिरी तयारी करणु घुर्जे जो कंहिं शिकायत जो मौक़ो न हुजे। जेतोणीक अगकथियूं घणो अॻु में मिली वञनि, पर पोइ बि इहे इदारा पंहिंजो कमु नथा कनि। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो बरसाति खां अॻु उपाउ वठण जी घुर्ज।

ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਖੇ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਸਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰੋਂ भारत ए इसराइल पैंजे वचनबद्धता के बीहर दोहराए तो बाहिमी सहकार के वधिक पुख्त बनाए वो इन अलावा खास हिकमत अमली भाईवारी में थियल वाधारे जो जायजो वरत भारत ओडिशा में सुबाइते नमूने से विचोले दर्जे के अग्नि फोर बैलिस्टिक मिसाइल की सुबाइती आजमाइश कई है। ईरान ओमान सठ दिन स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस के बीहर का खोलने लाइन पान में सूझबूझ से रजामंद थी वह महीने की 20 तारीख से बांग्लादेश में सदर जो चूंडू थन्द हौथी मिसाइल ए ड्रोन हमलन में टीह यमिनी सिपाही मारजी वह टे भारतीय शटलर्स असम में कोरियन मास्टर्स के वुमेन्स सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंची वह

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी असां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
1: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमें इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर आइए हम स्वयं हैंडलूम
2: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as the chief guest with Indian Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Indian Cabinet has approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing with a New Delhi Information and Broadcasting Minister, Ashwini Vaishnav said, the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of four-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. The Centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency, readjustment and reservation. India Meteorological Department has predicted heavy rainfall across Kerala. We have more from a correspondent.
3: The red alert that was in force overnight in Pathanamthitta, Kottayam and Idukki districts in Kerala has been downgraded to orange alert today. Orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall, is also in force in 5 other districts. The remaining 6 districts in Kerala under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
2: U.S. President Donald Trump has signed 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system. In badminton, India's Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj have progressed to the women's singles quarterfinals at the Korea Masters in Asan. Tanvi continued her impressive run by defeating a compatriot, Shriyanshi Valishetty, in the pre-quarterfinals. Ashmita beat home favorite Kim Min-chi, while Rakshita defeated Japan's Manami Suizu. In the men's doubles pre-quarterfinals, the Indian duo of Prithivi Krishnamurti Roy and Krishna Prasad Garaga defeated a South Korean pair to secure a place in the quarterfinals. All eyes will now be on today's women's singles and men's doubles quarterfinal matches. India has successfully test-fired the medium-range ballistic missile Agni-4 from the integrated test range at Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the launch validated all operational and technical parameters of the missile. And that is the end of this news bulletin.

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप स्नेहा चंद के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा।

आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर सुबह हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सपने देखते रहें या उठकर उन्हें पूरा करने में लग जाएं। नई सुबह, नया दिन और नए से ख्वाब बुनते हैं। सफर मुश्किल ही सही, पर रास्ते हमको ही चुनने हैं। तो बस दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करें इस प्यारी सी स्माइल के साथ और लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में।

दोस्तों, आज के समय में उठते ही आपने देखा होगा हमारी सबसे पहली आदत होती है अपना फोन चेक करने की, और जरूर आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। जिससे कि क्या होता है कि आपका माइंड जो है अपने कार्य से भटक कर कहीं और चला जाता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अपने दिन का कंट्रोल पहले एक घंटा जो है वो अपने पास रखें और केवल अपने आप को ही समय दें।

बिल्कुल दोस्तों, अपने दिल की रजा जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने दिल की पहले सुनेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, और जब आप ये सब अपने कार्य पूरी तन्मयता से करते हैं और पूरे ध्यान से अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं, तो आप देखोगे कि आप पूरा दिन अंदर से खुश रहोगे, और जब आप अंदर से दोस्तों खुश होंगे तो वही खुशी आपके चेहरे पर बाहर भी नजर आएगी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

दोस्तों, हमारी खुशी तो आप सबसे है और आपसे मिलते ही हमारे चेहरे पर अपने आप ही खुशी छा जाती है। ढूंढने से अक्सर मिलती नहीं खुशी, ढूंढने से अक्सर मिलती नहीं खुशी, ये तो छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। छोड़ दो कल की चिंता, आज में जीकर देखो जिंदगी हर पल में कितनी हसीन होती है।

दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। और हम छोड़े जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस

0: निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन की महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
2: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रे, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
3: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
4: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
5: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
6: समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
7: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमरीकी आवेदन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
8: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे।

0: रखती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल गोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन की महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसाम में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा।

0: साझेदारी के रोड मैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दो तरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेन्द्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लुक गो ने की। तूफान ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वालीशेट्टी को हराया था, जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे खवातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। खवातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले खवातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा, जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस मुद्दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने आरबीआई के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली एनसीआर में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज पर ईरान और ओमान के दरमियान इत्तेफाक, वादों पर अमल करने के अमरीका के मुस्बत इशारे, अमरीकी सदर वजीर दिफा पर सख्त बरहम, हथियारों की कमी पर जवाब तलब किया।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर, मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर संगत की है आशीष मिश्रा ने और हारमोनियम पर हैं जाकिर धौलपुरी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे राकेश पाठक का गायन राग शुद्ध सारंग में। तबले पर थे आशीष मिश्रा और हारमोनियम पर संगत की थी जाकिर धोलपुरी ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी से जुड़े विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं। आलेख एवं स्वर विजय किशोर तिवारी।
1: जब भी महात्मा गांधी की छवि हमारे सामने आती है तो हमें ये एहसास होने लगता है कि उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश के समान है। महात्मा गांधी एक नेता, समाज सुधारक होने के साथ एक संत भी थे। वैश्विक राजनीति में उनके जैसा चमत्कारी नेता का उदाहरण हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। बापू पत्रकार, दूरदर्शी, संस्था निर्माता भी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि समाज बदलने के लिए विचारों का आदान प्रदान तथा व्यवहारिक स्तर पे उसका प्रयोग जरूरी है। महात्मा गांधी के ऐसे ही दो हथियार, पहला पत्र पत्रिकाएं तथा दूसरा संस्थाओं ने देश में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा स्वदेशी आत्मनिर्भरता की नींव रखी। इन दोनों साधनों के माध्यम से गांधी जी ने

न केवल देश को जागरूक किया बल्कि पत्र पत्रिकाओं और संस्थाओं को समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम के रूप में भी प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही भारतीय पत्रकारिता जगत में नव चेतना एवं उत्साह का संचार हुआ। ये कहना अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद पाकर पत्रकारिता जगत पुलकित रोमांचित होकर अब अपने निर्भीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने लगा था। महात्मा गांधी के लेखों में जहां भारतीय संस्कृति धर्म एवं नैतिकता के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण स्वरों की झंकार गुंजायमान होती है, वहीं समय समय पर रस्किन जैसे दार्शनिकों एवं चिंतकों के विचार भी छपते थे, जिससे आम भारतीयों में वैचारिक राष्ट्रवाद तथा सत्याग्रह साधनों का विकास हुआ। महात्मा गांधी से जुड़े पत्र पत्रिकाओं ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं से देश में जन जागृति तथा समाज सुधार के विभिन्न प्रयास किए। इन पत्रिकाओं आदि में छपे विचारों से देश के राजनीति में महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता से जन नेता के रूप में स्थापित हुए। गांधी जी की पत्रकारिता कोई व्यवसाय या आर्थिक साधन नहीं था, बल्कि ये उनके लिए जनता की सेवा, संवाद, सत्याग्रह आदि का एक माध्यम था। इन पत्रिकाओं में किसी भी तरह का विज्ञापन दिखाई नहीं देता था। महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं: इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत 4 जून 1903 को दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर से की गई। यह मुख्य रूप से रंगभेद के खिलाफ लड़ने और भारतीय समुदाय के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया था। नवजीवन पत्रिका। नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा 7 सितंबर 1919 को शुरू किया गया। यह एक प्रमुख गुजराती साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका उद्देश्य अहिंसा, स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करना था। इस पत्रिका में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन तक बापू के विचारों और सत्याग्रह के संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इंडिया, ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। इसमें गांधी जी के प्रभावशाली और ऊर्जावी लेख होते थे। इसमें क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला। यंग इंडिया पत्रिका से पढ़े लिखे वर्ग को व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। पत्रिकाओं का महत्व। इन पत्रिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये रही थी, इन पत्रिकाओं के माध्यम की भाषा काफी सरल और सहज स्पष्ट थी और आम लोगों के समझने के लायक थी। इन पत्रिकाओं के माध्यम से महात्मा गांधी ने जमीनी स्तर के ग्रामीण व शहरी समस्याओं को उठाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि सामाजिक न्याय के तहत अपने लेखों से सामाजिक समानता पर भी जोर दिया। गांधी जी ने एक तरह से इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। बापू ने सिर्फ अपने विचारों को जनमानस के सामने ही नहीं रखा, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें से कई संस्थाओं का स्वतंत्रता संग्राम तथा समाज सुधार में अहम योगदान रहा। इनमें से कई संस्थाओं की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख संस्थाएं फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास स्थापित किया गया। गांधी जी और उनका परिवार 1914 में भारत लौटने तक इसी आश्रम में रहे। ये आश्रम आत्मनिर्भरता, सादगी, सत्य तथा अहिंसा का प्रमुख केंद्र था। साबरमती आश्रम 1917 में स्थापित गुजरात में साबरमती आश्रम केवल महात्मा गांधी के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि सत्याग्रह और आजादी के पावर हाउस भी थे। यहीं से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम आगे चल के आजादी का केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हुआ। गुजरात और बिहार विद्यापीठ। गुजरात और बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान

0: गई। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन विद्यापीठों की स्थापना की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ देश में स्वदेशी खादी को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 1925 में महात्मा गांधी ने इसका गठन किया था। सेवाग्राम आश्रम, महात्मा गांधी ने 1936 में इस आश्रम की स्थापना वर्धा में की थी। ये साबरमती के बाद दूसरा आश्रम था जो महात्मा गांधी का प्रमुख निवास स्थान बना। इस आश्रम से भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी। गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति, जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए, इसी संस्थान से उनके विचारों का प्रसार और प्रचार हुआ और गांधी सम्मेलनों का आयोजन व्यापक तौर से देखने को इस संस्थान से मिला। इन संस्थाओं का महत्व, महात्मा गांधी से जुड़े संस्थाओं का अपना खास महत्व रहा है। इन संस्थाओं में महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों के चिन्ह हमें आज भी दिखाई देते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से देश में जन जागृति जगी तथा देश के साथ वैश्विक राजनीति और इतिहास में भी महात्मा गांधी का नाम अमर हो गया।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था गांधी जी से जुड़े विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संस्थाएं। आलेख एवं स्वर विजय किशोर तिवारी।

इसके साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम।

سهله چشم جریم در اقدس پہ حاضر ہوں پسے

0: टैगोर की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने बंगाली, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य को समझा। बाद में वकालत पढ़ने के लिए वो लंदन गए और भारत लौटने के बाद उन्होंने साहित्य में ही फोकस किया। महज 16 साल की उम्र में इन्होंने भानु सिंह उपनाम से कविताएं लिखी, जिन्हें पढ़कर लोगों को लगा कि ये किसी प्राचीन सिद्ध कवि की रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये सम्मान उन्हें उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था।
1: On this solemn occasion, let us not simply remember Rabindranath Tagore as a legendary poet, but also as a visionary who believed in the limitless potential of humanity. His message of peace, harmony, and universal brotherhood is as relevant today as it was during his lifetime.
0: बिल्कुल, टैगोर आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके लिखे 2000 से ज्यादा गीत, उपन्यास और हमारा राष्ट्रगान हमेशा हमें ये एहसास दिलाते रहेंगे कि मानवता और कला की कोई सीमा नहीं होती। और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा ने। उनका मूल नाम था गुलशन कुमार मेहता, लेकिन उनको वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था नाम। बाद में ये नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरा फिल्म उद्योग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगा। अपनी साहित्यिक सोच के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े। गुलशन बावरा ने जीवन के हर रंग के गीतों को अल्फाज दिए। उनके लिखे गीतों में दोस्ती, रोमांस, मस्ती, गम, विभिन्न पहलू देखने को मिलते हैं। तो आइए सुन लेते हैं उनके कुछ चुनिंदा गाने।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद अम्मार से खबरें सुनिए। मरकज ने गोवा असम्बली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को इख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वह भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असम्बली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असर नौ तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के नफाज को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असम्बली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निजाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराये पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाजत देने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सार्फीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्त

0: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड, इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मॉनसून की चुनौतियां कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उड़ें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खासतौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर जो बारिश की बौछारें हुई हैं उनसे बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
2: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कहीं आपदाएं घटित होती है और इसके लिए हम पहले से पूरा तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्वानुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती है जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा उसको ध्यान

0: मेरा रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। हमारा भारत मौसम विभाग है, वो हर हफ्ते अपने मौसम के पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं, जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा। और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सप्ताह के उपाय किए जाते हैं, न सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिश की जाती है।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहाँ पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: देखिए, जहाँ तक मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉप्लर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं, जिस पर रिलाई किया जा सकता है, उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटिंग, भूस्खलन या बाढ़ कभी बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहाँ पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियाँ सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी सही सूचना कहीं बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बताया रिक्तिकरण करते हैं कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सबके बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिसमें हम सबसे ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स के टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्था है वो भी सीमित होती है। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो है स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ की टीम, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट को भी कहा गया कि आप अपनी भी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं और मलबा कटाव बहुत करता है और पानी के साथ जो मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं। तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गो के जरिए ले के जाए। तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते। तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिस की भी बात करते हैं। एक और चीज जिसको मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है। जिसकी तरफ हमारा

0: पर ध्यान नहीं जाता, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाने लगे हैं और बड़े बड़े दुर्गामी स्थलों पर जाते हैं। उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती है। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
1: वहां पर आप ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही है अपेक्षाकृत पहले की तुलना में, इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से बारिश के कारण से तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही है उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जो लाइटनिंग होते हैं उससे पहले थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर है। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहाँ से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है, तो आउटडोर्स में है तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, ट्रेडी हाउसेस में जाना चाहिए और वहाँ पे अपने बचाव के लिए कोशिश करनी। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप पतलोते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चले जाते हैं मेटल पेड़ के बाद, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती है। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है। तो उस समय में उखड़ बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके पानी में अपना हेड डालते हुए उखड़ बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा थर्मल जगह पर जहाँ पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप उसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो वहां पे घना जहां पे पौधों का समूह हो तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए। तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर है जैसे जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी वन क्लोज एरिया में, ओपन एरिया में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है यातायात के लिए, पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज है पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहाँ पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, पर जो कैपेसिटी भी है क्षमता है नालों की वो भी पूरा काम नहीं करते। अगर उसमें से मिट्टी गर्दा पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते, क्लीनिंग लेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है, तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, और तीसरा हम लोग जो है अंडर पासिस बना रहे हैं जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और उसमें फंस जाते हैं। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइन्स, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और इनंडेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो न सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सुमित प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता की समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोताओं का।
1: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

खोले खाए पहले।

गीता दत्त और साथियों को आपने सुना फिल्म थी बाजी। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म है परख।

आशु भोसले की आवाज में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है और आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद। अगली पेशकश लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में चिराग फिल्म से है।

अनुपमा फिल्म का नगमा भी आपने आशा भोसले की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है भाभी।

着你发呆。

Bye.

मिस्टर मिसेस 55 फिल्म का नाम अभी आपने गीता दत्त और सखियों की आवाजों में सुना। यह सुमन कल्याण पर फिल्म है नूर जहां।

आशा भोसले की आवाज में ये नगमा आपने सुना दो बदन फिल्म से। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए मोहतरमा अमीना अबुल हसन का तहरीर करदा ड्रामा और वन है परतव।

0: बड़ी माँ क्या है रोजी? छोटी माँ आपको याद कर रही है।
1: आती हूँ अभी 5 मिनट में।
2: ओफो, आप ही क्यों नहीं जाती बड़ी माँ? मैं इनके इंतजार में किवाड़ पकड़े खड़ी हूँ। मेरे काम पर इतना हर्ष हो रहा है मगर बड़ी माँ आ ही नहीं रही। और जाने कितनी देर तक ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा।
1: मैं आ गई रोजी।
2: गॉड ब्लेस हर, आ गई आखिर। इतनी देर लगा दी आपने, क्या कर रही थी वहाँ?
1: मैं खाना खा रही थी रोजी।
2: खाना? तौबा तौबा, आपने बहुत बुरा काम किया। आपको वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए था, हर किस नहीं।
1: लेकिन क्यों? आखिर तुम अपने रुखसार क्यों पीट रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी है?
2: बहुत बड़ी गलती की है आपने बड़ी माँ। आप मुसलमान हैं और वो हिंदू,
1: तो इससे क्या होता है रोजी? वो लोग दोस्त हैं मेरे।
2: इससे गुनाह होता है बड़ी माँ। अब मम्मी आकर कितनी खफा होंगी आप पर और मुझ पर भी, देख लेना आप।
1: लेकिन मैं क्या करती रोजी? उन लोगों ने इतने प्यार से रोका, इतना इसरार किया कि मैं इनकार कर ही नहीं सकी।
2: इनकार करना अच्छा भी नहीं लगा मुझे। ही तो गड़बड़ है सारी। प्यार की आड़ लेकर लोग सारा काम करवा लेते हैं।
1: मतलब
2: यही है बड़ी माँ कि ऐसा करके आपने अपना मजहब मैला कर लिया है। आप कुछ भी कहकर टाल सकती थी उन्हें, कोई भी बहाना बना सकती थी।
1: मगर क्यों? किस लिए बहाना बनाती रोजी? क्या बहाना बनाना अच्छा लगता? उनकी समझ में ना आ जाता
2: तो आपका क्या बिगड़ जाता? और गुनाह से तो महफूज हो जाती।

0: चुप हो जाओ रोजी, अगर मम्मी आकर नाराज होंगी तो हम मना लेंगे उन्हें, लेकिन अब खुदा के लिए तुम और मत बोलो।
1: ठीक है मैं काम करूंगी, आप छोटी माँ के साथ पढ़िए तब तक।
0: आप छोटी माँ के साथ पढ़िए तब तक, जैसे मुझे तो पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है।
2: कहती हूँ क्या हुआ अगर मैंने वहाँ खाना खा दिया है?
0: जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
2: इतनी बड़ी बात हो गई, बड़ी बहू को इसकी खबर ही नहीं। मैम साहब आकर मुझसे ही तो पूछेंगी। तुम सरत तो भी बच्ची है, तुम क्या करती रही? तुम्हें रोका मना क्यों नहीं किया? घर को लुक आफ्टर करने का यही तरीका है क्या? सब कुछ हो जाने के बाद अफसोस करती हो? लेकिन जब बच्चे पूछे बिना कुछ कर ले तो बेचारी रोजी क्या करे?
3: अगर मैम साहब
2: मुझे कहेंगी तो मैं ऐसा कहूंगी, और अगर मैम साहब वो कहेंगी तो मैं ये जवाब दूंगी। खैर हुई, कुछ वक्त मिल गया मुझे, वरना सवाल व जवाब की फहरिस्त भी कहां पे दिमाग में तैयार कर सकती थी। मुझे तो यही खौफ खाया जा रहा है कि हिंदुओं के घर उनका बनाया हुआ खाना खाकर बड़ी माँ ने अपना मुसलमान मजहब पूरा ना सही कुछ ना कुछ जरूर पालूदा कर लिया है, तो इसका तोड़ क्या होगा? कोई हो ना हो, मैं तो मजहब के मामले में बहुत सख्त हूँ भाई। सब जानते हैं कि हर सुबह बिस्तर से उतरे बगैर अपने बाएं हाथ की पहली उंगली से अपने सीने पर सलीब बनाकर आफियत की तलबगार होती हूँ, फिर नहा धोकर यीशु मसीह की तस्वीर के आगे दिली अकीदत से नई कैंडल जलाती हूँ, हर वक्त चलते हुए चराग को खूब तेल पिलाती हूँ ताकि कभी बुझने न पाए। तब खुशबूदार अगरबत्तियां सुलगाकर पूरे एतकाद और एहतराम से यीशु मसीह की तस्वीर के चौकटे को बोसा देती हूँ, उससे अपना माथा चुराती हूँ और मुख्तलिफ दुआएं जिनमें निजात की दुआ सब दुआओं पर हावी होती है सिर्फ के दिल से पढ़कर ही दिन भर के दूसरे तमाम काम शुरू करती हूँ।
1: बड़ी माँ छोटी माँ
0: जागिए, सुबह हो गई।
4: बड़ी माँ क्या है रोजी, सोने दो ना थोड़ी देर और।
2: नहीं उठाइए, अब उसका खाना तैयार है बिल्कुल। ये रही आपकी चाय गरम गरम।
4: सोने भी नहीं देते।
1: जागिए छोटी माँ जागिए,
4: अभी नहीं उठना हमें, सोना चाहते हैं।
2: और सो लेना छोटी माँ, लेकिन कल आज तो उठने का वक्त हो गया है, देर करेंगी तो मम्मी पापा को देर ना हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी उठिए, ये रही आपकी चाय और ये रहे आपके कपड़े, उस खाने में जाइए फौरन।
5: ये मुसीबत टलेगी थोड़ी, नाजुक हो जाती है हर सुबह जान पर।
1: सुबह बखैर रोजी।
2: सुबह बखैर छोटी माँ। शाबाश।
4: सुबह बखैर रोजी।
2: सुबह बखैर बड़ी माँ। अरे वाह, आप दोनों के तैयार होने तक मैं मम्मी पापा को चाय और ताजा अखबार पहुँचा कर आती हूँ।
1: नाश्ते की मेज पर आप दोनों से मुलाकात होगी। अच्छा
4: अच्छा।
1: गुड मॉर्निंग मैम साहब।
2: गुड मॉर्निंग रोजी। गुड मॉर्निंग साहब जी।
6: गुड मॉर्निंग रोजी, कहो कैसी हो?
1: अच्छी हूँ साहब।
2: अजीब बात है, रात भर सोने के बावजूद मैम साहब का चेहरा कभी मान नजर नहीं आता, कभी फीका दिखाई नहीं देता, बल्कि हमेशा चढ़ते हुए सूरज की तरह दमकता लौ देता हुआ महसूस होता है। और फिर जाने कैसे यही चमक यही लौ बड़ी माँ छोटी माँ के चेहरे पर फैल जाती है, खुदा जाने कैसी रोशनी है ये। हर रात अपने क्वार्टर में लौटकर मैं कितनी देर तक आंखें फाड़े अपने चेहरे को तकती रहती हूँ, मगर कभी फूले से भी ऐसी रोशनी ऐसी दमक मुझे अपने चेहरे पर नजर नहीं आई। जरूर मैम साहब कोई खास क्रीम इस्तेमाल करती होंगी तभी तो। खैर आज जब अपने मम्मी पापा के साथ शाम की सैर से लौटकर

0: यहाँ पढ़ाई से फारिग हो जाएंगी तो जरूर उनसे पूछूंगी। अरे अभी तो सारा काम पड़ा है, निपट लूं पहले। बार मोम साहब को ड्रेसिंग कैबिनेट तो ढूंढा है मैंने, मगर कभी कुछ हाथ ही नहीं है। सिलवार की वो ही सारी कॉमन चीजें जो तकरीबन आज की हर मॉडर्न औरत इस्तेमाल करती है, मगर चेहरे को रोशन और दिलावेज बनाने वाली वो खास चीज जो सिर्फ मोम साहब से वाबस्ता है कभी भी तो हाथ नहीं लगी मेरे। स्वरूप छुपा कर रखती होंगी मोम साहब और क्या।
1: हेलो रोजी।
0: हेलो, शाम बखैर बड़ी माँ।
1: हेलो रोजी।
0: हेलो, शाम बखैर छोटी माँ। मम्मी पापा के साथ सैर और मास्टर जी के साथ पढ़ाई हो चुकी, खाना लगा दूँ मेज पर।
1: हाँ रोजी, बहुत भूख लग रही है।
0: तो आप दोनों हाथ धोकर मेज पर आइए फौरन।
1: बस आ ही रहे हैं, तुम लगाओ खाना।
0: आज हमने शकरकंदी की खीर बनाई है बड़ी माँ, आपको बहुत पसंद है ना?
1: सच बहुत पसंद है रोजी, बहुत बहुत।
0: और आज मम्मी पापा चॉकलेट केक भी लाए हैं। सुन रही है छोटी माँ?
1: ओ रोजी, प्यारी रोजी, ये तो मेरी खबरें सुनाई तुमने। आज खाने के बाद स्वीटेस्ट चॉकलेट केक ही दोगी ना मुझे?
0: हाँ हाँ दूंगी, जरूर दूंगी। लेकिन पहले एक बात बतानी होगी आपको।
1: कौन सी बात?
0: पूछो ना।
1: पूछो ना मुझे।
0: वो
1: ओप्पा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो?
0: मैं
1: कोई नहीं है आज।
0: मैं
1: पूछो ना।
0: अच्छा ये बताए आप दोनों रात में क्या चीज मुंह पर लगाकर सोती है?
1: मुंह पर?
0: हाँ
1: कुछ भी तो नहीं रोजी।
0: याद कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए आप।
1: कुछ भी नहीं रोजी, यकीन मानो कुछ भी नहीं।
0: ओ,
1: तो क्या
0: फिर
1: क्या बोलो ना रोजी, बात क्या है आखिर?
0: तो क्या चमक और रोशनी आपके चेहरों पर ऐसे ही फैल जाती है अपने आप?
1: रोशनी? कैसी रोशनी रोजी?
0: अब ये लीजिए आपकी शकरकंदी की खीर बड़ी माँ, और ये रहा आपका चॉकलेट केक छोटा।
2: मत बताइए, जाने दीजिए।
1: खुदा मालूम क्या मामला है रोजी, आज इतनी गुमसुम क्या है?
0: हाँ
1: हमेशा जैसी हशाश बशाश भी नहीं, जरूर कोई फिक्र है रोजी को, शायद किसी चीज की तलाश है।
0: मगर वो क्या चीज हो सकती है भला,
1: यही तो समझ में नहीं आ रहा है।
0: क्यों ना पूछ ली खुद रोजी से जाकर?
1: पूछना ही पड़ेगा। ठहरो, मुझे ख्याल आया है, शायद सही हो।
0: कैसा ख्याल?
1: रुको रोजी।
2: जी बड़ी माँ।
1: मैं समझ गई तुम क्या पूछना चाहती हो।
0: समझ गई ना, तो बताए फिर।
1: तुम्हें मम्मी की क्रीम चाहिए ना?
0: हाँ हाँ वही वही। तो बड़ी माँ क्या है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ला सकती हूँ मैं मम्मी की दराज से।
0: क्या क्या जरूर जाएंगी बड़ी माँ?
1: हाँ रोजी, तुम्हारे लिए मैं जरूर लाऊंगी।
0: लेकिन अगर मेम साहब को पता चल गया, मेम साहब खबर तो?
1: तुम्हें कह दूंगी मैंने अपने लिए ली थी, लेकिन मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती रोजी।
0: ओह गॉड ब्लेस यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।
1: इतनी सी बात के लिए उदास हो रही थी?
0: मैं डर रही थी छोटी माँ।
1: क्यों क्यों डर रही थी रोजी? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? क्या हम तुम्हारी इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? तुम भी तो कितना कुछ करती हो हमारे लिए।
0: ओह गॉड, कितनी प्यारी बच्चियां हैं ये, मेरी तवक्को से ज्यादा प्यारी।
1: बस अब बेफिक्र हो जाओ, कल ये क्रीम तुम्हें जरूर दे देंगे।
0: प्रॉमिस?
1: प्रॉमिस रोजी. अच्छा गुड नाइट.
3: गुड नाइट रोजी.
1: गुड नाइट गर्ल्स.
0: इतनी रात गुजर गई मगर नींद ही नहीं आती. ऐसी भी क्या खुशी. बड़ी माँ छोटी माँ ने वादा तो कर ही दिया है कि वो खास क्रीम जरूर मुझ तक पहुंचा देंगी. फिर ये बेकरारी क्यों. शायद उसे खुपाने की खुशी है ये. हाय सुबह जल्द क्यों नहीं हो जाती. ये रात मिनट भर में गुजर क्यों नहीं जाती. करवटें बदल बदल कर थक गई हूँ बिल्कुल.
1: सुबह बखैर गर्ल्स.
4: सुबह बखैर रोजी.
0: आप लोग तैयार होइए तब तक मैं साहब मेम साहब को चाय देकर आती हूँ. लाई है ना मेरी चीज.
1: हाँ हाँ कहो तो अभी दे दे.
0: नहीं नहीं अभी नहीं शाम को लूंगी.
1: ठीक है तो फिर जाओ.
0: ऐसी सुबह के क्या कहने.
1: रोजी कितनी खुश है आज
3: और किस कदर ज्यादा.
1: उसकी पसंदीदा क्रीम जो मिलने वाली है उसे.
3: हाँ सचमुच कितनी खुशी हो रही है मुझे रोजी को इतना ज्यादा खुश देखकर.
1: रोजी हमें प्यार भी तो बहुत करती है बाजी.
3: और क्या डरा भी लेती है कभी कभार
1: लेकिन प्यार तो हमेशा करती है.
3: हर रोज हमारी पसंद की कोई ना कोई चीज भी तो जरूर तैयार करती है.
1: हालांकि बेचारी रोजी फिर भी खान सामान नहीं चला सकती.
0: खुदा खुदा करके शाम आ ही गई. आखिर कितना इंतजार करना पड़ा आज शाम के लिए.
1: ये अपने आप से क्या बातें कर रही हो रोजी.
0: कुछ भी तो नहीं छोटी माँ. मैं सोच रही थी अब.
1: हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं. क्या अब सोच की भी आवाज होने लगी रोजी.
3: बहुत चालाक हो रही है आप.
0: खैर बड़ी माँ कहाँ है.
1: अब ये नहीं रोजी.
0: मेरी आंखें तो खोलिए. हटाइए ना अपने हाथ.
1: अगर ना हटाओ तो क्या कर लोगी.
0: क्या करूंगी. यूं ही खड़ी रहूंगी और आप ही फूकी रह जाएंगी.
1: अरे हाँ ये तो मैंने ख्याल ही नहीं किया. लाओ खाना फौरन.
0: टेबल तो मैंने कब का तैयार कर दिया है. देखिए जब आप दोनों पड़े ही थी ना तभी से.
1: रोजी तुम तो दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हो.
0: थैंक यू बड़ी माँ. लेकिन खुशी के साथ साथ मैं बहुत डरी हुई हूँ.
1: क्योंकि क्यों.
0: क्योंकि कल दिन भर मेम साहब बाहर रही और रात पार्टी में चली गई. लेकिन आज जान बख्शी नहीं होगी मेरी.
1: किसकी आखिर. क्या क्रीम के लिए.
0: नहीं नहीं छोटी माँ. बड़ी माँ के पड़ोसियों के यहाँ खाना खाकर आने के लिए.
1: क्यों रोजी अब भूल भी जाओ वो बात. जब मम्मी पूछेंगी तब देखेंगे.
0: अजी तब सोचने के लिए वक्त थोड़ी मिलेगा आपको. इसलिए कहती हूँ आप ही सोच लीजिए क्या कहना होगा.
1: अच्छा अच्छा सोच लूंगी. ये लो अपनी क्रीम.
0: ये
1: और क्या. यही तो वो क्रीम है जो मम्मी पार्टियों में जाते वक्त इस्तेमाल करती है. सुबह से अलमारी में रखी हुई है तुम्हारी फुर्सत के इंतजार में.
0: लेकिन ये तो वो क्रीम नहीं है जो मैं चाहती थी. ये क्रीम तो मेम साहब का ड्रेसिंग टेबल साफ करते वक्त मैं अक्सर लगाकर देख चुकी हूँ.
1: क्या सफाई करते हुए. क्या तुम मम्मी की सभी चीजें हमेशा इस्तेमाल कर लेती हो.
0: नहीं नहीं बुढ़ी माँ मेरा ये मतलब नहीं था. मैं तो ये कह रही थी कि ये क्रीम मैंने कई बार ड्रेसिंग टेबल पर देखा हुआ है.
1: तब फिर
0: ये वो क्रीम हरगिज़ नहीं बड़ी माँ जिसका रोशनी से रिश्ता है.
1: क्या क्या बक रहे हो रोजी तुम. क्रीम का रिश्ता रोशनी से कैसे हो सकता है.
3: कहीं तुम पगला तो नहीं गई
0: थी. अब मैं आपको कैसे समझाऊं.
2: रोजी
0: ओह जीसस प्रेम साहब अभी अब मेरी पेशी होगी. मुझे तो डर लग रहा
1: है. अरे अरे
3: तो मम्मी के कमरे की तरफ जाने के बजाय किचन में क्यों भाग रही हो रोजी?
1: चुपना चाहती है शायद।
2: रोजी रोजी
1: क्या बात है मम्मी?
0: क्या रोजी फिर भी नहीं है? कहीं गई हुई है?
1: है तो मम्मी,
0: फिर आती क्यों नहीं?
3: रोजी रोजी आ जाओ, मम्मी बुला रही है तुम्हें।
2: जी मैम साहब।
0: क्या हुआ रोजी, तबीयत खराब है तुम्हारी?
2: नहीं तो मैम साहब।
0: फिर किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुसर्रत या नुसरत ने सताया है क्या?
2: जी नहीं।
0: तो फिर तुम इतनी डरी डरी सहमी सहमी सी क्यों हो?
2: नहीं नहीं तो मैम साहब।
3: अरे अरे
2: जा कहाँ रही हो रोजी?
3: वो मम्मी बात दरअसल ये है कि।
0: क्या बात है बेटी? तो रोजी अलग सहमी हुई है और तुम भी कुछ परेशान सी हो, क्या बात है?
3: क्यों मैं साफ साफ कह दूं मम्मी?
0: बेशक, माँ से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए बेटी, हर हालत में सच्चा मशवरा माँ ही दे सकती है।
3: सॉरी मम्मी, तो सुन लीजिए कि हमसे एक भूल हो गई है।
0: भूल? कैसी भूल?
3: कल दिन में जब आप घर पर नहीं थी तो हम छुट्टी होने की वजह से शुक्ला आंटी के यहाँ खेल रहे थे उनके बच्चों के साथ।
0: हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेटा, वो सब तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं।
3: तो जब खेलते खेलते दोपहर हो गई और वो लोग खाने के लिए बैठे तो मुझे भी जबरदस्ती रोक लिया। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो लोग माने ही नहीं मम्मी।
0: तो
3: मुझे उन सबके साथ खाना ही पड़ा। इतने प्यार से इतने इसरार से उन्होंने रोका कि मुझे इनकार हो ही नहीं सका।
0: अरे ये तो अच्छी बात है बेटी, पड़ोसियों को एक दूसरे से मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तुमने उनकी बात को नहीं ठुकराया, अच्छा ही किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके यहाँ खाना खाकर भूल भाल जाओ और उन्हें कभी अपने यहाँ खाने पर ना बुलाओ। अगली दफा तुम उन सबको अपने यहाँ खाने पर मत करना और तमाम चीजें बतौर खास उनकी पसंद की बनवाना।
3: तो हमने कोई भूल कोई गलती नहीं की मम्मी।
0: कैसी भूल कैसी गलती बेटा, सबसे घुल मिलकर रहना तो अच्छा ही है, कोई बुराई थोड़ी है इसमें।
3: लेकिन रोजी तो कहती है ऐसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की है, हिंदुओं के यहाँ उनका बनाया हुआ खाना उनके साथ खाकर अपना मुसलमान मजहब मैला कर लिया है हमने।
0: ओफो ये रोजी भी तभी डरी डरी सहमी सहमी छुपती फिर रही है, पतली है बिल्कुल। ये तो कहाँ है रोजी, बुलाओ उसे।
1: रोजी रोजी मम्मी रोजी तो दरवाजे की ओट में खड़ी सीने पर सलीब बना बनाकर जीसस को पुकार रही है। मम्मी मालूम है क्या कहती है? कहती है मर्सी जीसस मर्सी।
0: जाओ पकड़ के लाओ उसे यहाँ, चलो जाओ
1: चलो चलो। रोजी देख लिया, मैं ना कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
3: कुछ नहीं कहेंगे मम्मी, चलो तुम्हें बुला रही है।
1: मगर
3: कुछ आकर मगर नहीं, बस चलो। यकीन रखो बिल्कुल खफा नहीं होंगे मम्मी।
1: मगर मुझे तो डर लग रहा है बड़ी माँ।
3: क्यों नहीं, दरवाजे के पीछे छुप कर सब कुछ सुन लेने के बाद भी चलो।
1: प्लीज छोटी माँ
3: चलो।
1: छोड़िए ये नहीं मम्मी, छोड़िए
0: छोड़ दो तुम दोनों इसे।
1: मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं।
0: मत बनो रोजी, ऐसा फिर कभी मत कहना, सोचना तक नहीं रोजी।
1: हाँ?
0: प्यार मोहब्बत कोई गलती कोई गुनाह नहीं। बच्चों के जहन में ऐसे बेबुनियाद ख्यालात मत ठूसा करो। दुनिया के तमाम बसने वाले खुदा के बंदे होते हैं, उनसे नफरत या दूरी कैसी, उन सबको समझना सबसे प्यार करना ही असल जिंदगी है रोजी। ऐसा करके देखो खुद तुम्हें कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि आपसे मेलजोल और मोहब्बत भी इबादत से किसी तरह भी कम नहीं है। यही खुदा का हुक्म है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को हकारत से मत देखो।
1: समझे? समझ गई मैं साहब, समझ गई मैं।
2: آئندہ آپ کو ویسے کوئی شکایت نہیں ہوگی.
0: تو اب جاؤ اور اپنا کام دیکھو, اور سنو میرے لیے گرم گرم کافی بنا کر لے آؤ.
2: جی میم صاحب.
0: اور ہاں تم دونوں بھی اپنے کمرے میں جاؤ, آرام کرو جا کر.
4: اچھا ممی, شب بخیر.
0: شب بخیر.
1: روزی, روزی کیا بات ہے بڑی ماں؟
5: میں نے بیگ کمرے میں رکھ دیا ہے, اپنا یونیفارم بھی بدل لیا ہے. کیا میں شکلا آنٹی کے گھر کھیلنے چلی جاؤں؟
0: آپ تھوڑا آرام کر لیتی تو اچھا تھا, ابھی تو اسکول سے لوٹی ہیں, تھک گئی ہوں گی.
5: مجھے دن میں نیند نہیں آتی روزی, اس سے تو کھیلنا ہی ٹھیک ہے.
0: تو پھر جائیے. اب چھوٹی ماں کہاں ہے؟
5: وہ کمرے میں ہے, یونیفارم بدل کر کامک پڑھ رہی ہے.
0: کیا وہ کھیلنے نہیں جائے گی؟
5: معلوم نہیں مجھے.
0: اچھا آپ جائیں, میں دیکھتی ہوں چھوٹی ماں کو.
5: تھینک یو روزی.
1: کیا بات ہے روزی, جھانک کیوں رہی ہو اس طرح؟
0: میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کہیں سو تو نہیں رہی ہیں؟
1: دن میں سو لیتی ہوں تو رات میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے روزی, اسی لیے اس وقت کامک پڑھ رہی تھی. ذرا
0: یہ آپ ہی کی کامک ہے یا کسی اپنے دوست سے مانگ کر لائی ہیں؟
1: میری ہے روزی, میں نے کسی سے مانگی نہیں.
0: ویری گڈ, تو اب آپ اسے رکھ دیجیے اور آنٹی شکلا کے ہاں جا کے کھیلیے. ممی نے کیا کہا تھا کل رات میں؟ کہ آپس میں ایک دوسرے سے ضرور ملنا جلنا چاہیے.
1: وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر میں کامک کب پڑھوں گی روزی؟
0: رات میں سونے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھ لینا بس, اب اٹھیے نا.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تم چلو میں ابھی آ رہی ہوں.
0: ارے ارے یہ کیا روزی, تم نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یہ گرم گرم کافی, کیک, سموسے, آخر اتنے تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟
2: آنٹی جی
0: اس طرح نہیں کہتے اپنوں کو, برا لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس میں تکلیف کیا ہے کہ چھوٹی ماں اور بڑی ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے چائے کافی پی لے.
2: آؤ بچو آؤ آؤ آؤ, سب چائے پینے کے لیے آ جاؤ. یہ دیکھیے یہ رہا کیک اور یہ گرما گرم سموسے. گڑبڑ نہیں گڑبڑ نہیں, آرام سے لینا باری باری, سب کے لیے لائی ہوں, کم نہیں ہوگا کچھ بھی.
6: لیکن یہ بتاؤ روزی, آپ مسرت اور نصرت کو بڑی ماں اور چھوٹی ماں کیوں کہتی ہو بھلا؟ ان کو ان کے نام سے کیوں نہیں پکارتی آپ؟
0: میرے پاپا کہتے ہیں کہ مالکوں کے بچے کتنے بھی چھوٹے ہوں ان کا ادب کرنا عزت کرنا ضروری ہے, انہیں نام سے بلانا بدتمیزی ہوتی ہے, اس لیے سمجھ گئی نا؟
2: سمجھ گئی. اب اچھا بچوں بائے بائے. بائے بائے روزی, آپ بہت اچھے ہیں.

Harry, आज तो बहुत सो गई मैं। सूरज इतना चढ़ाया है, इतना तो कभी नहीं सोई मैं। अब जल्दी से भागना होगा, साहब एक साथ जाके ना गई हूँ। चलो आज बाल खुले रखकर ही क्यों ना चली जाऊं, बाल बनाने में और वक्त लग जाएगा। अब ठीक है, अब यही सही। अरे ये क्या, माय गॉड, कहीं मेरा आईना पगला तो नहीं गया है? आज मेरा चेहरा भी बिल्कुल बिल्कुल मेम साहब की तरह चमक दमक रहा है। अचानक उसी तेज उसी जोश से चमक आ गया है जिसकी जुस्तजू मुद्दत से कर रही थी मैं।

ये हो कैसे? मैंने तो कोई क्रीम इस्तेमाल ही नहीं की। बड़ी माँ की दी हुई क्रीम भी मेम साहब के ड्रेसिंग टेबल पर ही रखाई थी मैं। अब समझी मैं, तो ये प्यार की रोशनी है, प्यार की रोशनी। अब तक मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करती थी और सिर्फ अपनों से, मगर अब जब सब का प्यार दिल में बसाया तो मेरा चेहरा भी चराग बन गया। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया, आपने मुझे सबसे प्यार करना सिखा दिया। हे जीसस क्राइस्ट, हम सब पर अपनी मेहरबानी रखना। हम सब के दिलों में प्यार के चराग हमेशा हमेशा रोशन रखना, हमेशा रोशन रखना। जीसस क्राइस्ट, रोशन रखना।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा आमिना अबुल हसन का तहरीर करदा ड्रामा परतव। पेशकश प्रेम वोरा की थी और मुआविन थे सरफराज अहमद। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत और सिंगापुर ने भारत सिंगापुर जामे कलीदी शराकतदारी के खाते में उजागर 8 शोबों में बामी इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मतनव हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदाइशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। न्यू मैक्सिको अदालत ने मेटा को उसके प्लेटफॉर्म से नौजवानों को पहुंचे नुकसान के पेश नजर 5,67,00,000 अमरीकी डॉलर अदा करने का हुक्म दिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर सेंट रोइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीत लिया है। और बैडमिंटन में आज आसान में अस्मिता चांगया कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दो तरफा ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया है। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वज़ारत ख़ारिजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुद्रेंद्र टंडन और सिंगापुर की वज़ारत ख़ारिजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लिक गो ने की। तरफ़ैन ने इलाकाई और आलमी हालात व वाक़ियात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी ताउन और बामी रबता नहायत अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाएं। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जिद्दोजहद आजादी के हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जिद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुंभों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं। हथकरघे का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघे का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में एक कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी जबकि टेक्सटाइल्स की मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर मुमलकत पवित्र मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तिसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के ताउन को तस्लीम करना है। मरकज ने रियासत के असम्बली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असर नौ तरतीब देने से मुतल्लिक गोवा एक्ट 2025 के नफाज को नोटिफाई किया है जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असम्बली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। भारतीय गजट में शाया करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से यह कानून नाफिज होगा जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हल्के की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉ प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह एक दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी नाइंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सामद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों के मुख्तलिफ जुमरों की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीम शुदा इस्तेसनाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमे खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवानों को पहुंचने वाले नुकसान के इजाले के लिए 567 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा करने का हुक्म दिया है। ये उस संगे मील केस का दूसरा मरहला है जिसमें कंपनी को मार्च में शिकस्त हुई थी। जज ब्रायन बेल्टशीड ने फैसला सुनाया कि कुल फंड्स में से 420 मिलियन अमरीकी डॉलर नौजवानों के इलाज व मुआवजे की खिदमात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जबकि बाकी रकम अगले 5 साल के दौरान बेदारी और रोकथाम के प्रोग्रामों स्क्रीनिंग की खिदमात और दीगर मुतालिका अखराजात के लिए फराहम की जाएंगी। इस्तगासा ने जज से दरख्वास्त की थी कि वो मेटा पर ऐसी बुनियादी तब्दीलियां आयद करे जिनका मकसद नुकसानदेह आदात को फरोग देने वाले फीचर्स पर काबू पाना, उम्र की तस्दीक के निजाम को बेहतर बनाना और तयशुदा प्राइवेसी सेटिंग्स और सख्त निगरानी के जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को रोकना है। ताहम अदालत लाजमी तौर पर उम्र की तस्दीक का हुक्म देने से इनकार कर दिया। अदालत ने वाजे किया कि बच्चों की प्राइवेसी के वफाकी कवानीन मेटा को 13 साल से कम उम्र बच्चों के लिए उम्र की तस्दीक के आलात नाफिज करने से रोकते हैं। मुकदमे के पहले मरहले के दौरान एक ज्यूरी ने मेटा पर 375 मिलियन अमरीकी डॉलर का सिविल जुर्माना आयद किया था जिसमें यह बात सामने आई थी कि कंपनी ने दायस्ता तौर पर बच्चों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्म को छुपाया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे ओडिशा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शिमाल मशरक के हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जयोकिर सिंदारोव के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंद ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। बैडमिंटन में आज आसाम में भारत की अश्मिता चालिया कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने नंबर 1 खिलाड़ी जापान की हिना आकेची को 22-20, 21-15, 21-19 से हराया। इससे कबल वो जनूबी कोरिया के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने भारत सिंगापुर जामे के लिए शराकतदारी के खाके में उजागर 8 صوبوں میں باہمی شراکت کی پیشرفت کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھکرگاہ وراثت کے اظہار اور ہتھکرگاہ مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگاہ کا قومی دن منائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے. نیو میکسیکو عدالت نے میٹا کو اس کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو پہنچے نقصان کے پیش نظر 5,67,00,000 امریکی ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے امریکہ میں گرینڈ چیس ٹور سینٹ لوئس ریپڈ اور برس خطاب جیت لیا ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں اشمیتا چالیا کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
0: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. اب پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

मन की आंखें फिल्म का नगमा आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में है, फिल्म है रात और दिन।

0: सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये नगमा आपने सुना जब जब फूल खिले फिल्म से। अब सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर को, फिल्म है फिर कब मिलोगी।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का नगमा भी आपने सुना। फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है गोल्डन टेम्पल।
1: अमृतसर शमाली हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है। इसकी शोहरत की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक सबब यह है कि तमाम दुनिया के सिख अकीदतमंद यहां आने के ख्वाहिशमंद रहते हैं और जब भी मौका मिलता है यहां जरूर आते हैं। यही सबब है कि यहां का श्री हरमंदिर साहब, जिसे दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है, आम लोग इस इमारत को गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे इस नाम से जाने जाने की वजह यह है कि इस इमारत का बाहरी हिस्सा सुनहरा है। इसका नाम हरमंदिर साहब इस वजह से है कि इसे हरि यानी खुदा का मंदिर माना जाता है। एक खास बात इस इबादतगाह की यह है कि यहां किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, यानी कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, यहां आ सकता है। यह जरूर है कि यहां दाखिले के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, मसलन सर को ढकना, पैर को धोना, जूते या चप्पल वगैरह पहनकर दाखिल नहीं होना। पैर धोने के लिए दाखिली दरवाजे के बाहर पानी का इंतजाम है, इसमें पैर डालकर धोया जा सकता है, यहां पानी रवा रहता है। अगर हम हरमंदिर साहब की तामीर के मुतालिक गौर करें तो यह हकीकत सामने आती है कि यहां पहले उस तालाब की तामीर का काम शुरू किया गया था जिसके दरमियान में हरमंदिर साहब बनाया गया। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास ने तीसरे गुरु यानी गुरु श्री अमरदास के कहने पर तालाब की खुदाई का काम शुरू करवाया था। यह काम साल 1577 में शुरू हुआ था। बाद में इस तालाब को पांचवें गुरु ने ईंटों की मदद से पक्का करवाया था, जो दिसंबर 1588 में हुआ था। पांचवें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव ने ही यह मंसूबा तैयार किया कि उसी जगह पर सिखों के लिए एक मरकजी इबादतगाह को तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने खुद ही इस इमारत का मंसूबा तैयार किया और इसका काम शुरू करवाया। इस मकाम पर एक बहुत ही अहम हकीकत को सामने लाना जरूरी है। वो ये कि उन्होंने इस इमारत की बुनियाद रखने के लिए लाहौर से एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्सियत, जिनका नाम हजरत मियां मीर जी था, उनसे दरखास्त की। मियां मीर जी लाहौर के थे, उन्होंने ही इमारत की बुनियाद रखने का काम अंजाम दिया था। तामीर का काम गुरु श्री अर्जुन देव जी की कयादत में हुआ था। दूसरे अहम लोगों ने इस काम में उनकी मदद जरूर की थी। इमारत की तकमील साल 1601 में हुई, यानी तकरीबन 13 साल में। इसके बाद गुरु श्री अर्जुन देव जी ने वहां गुरु ग्रंथ को रखा और बाबा बुद्धा जी को वहां का पहला ग्रंथी बनाया। उनका काम था गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना, यानी इसे पढ़कर लोगों को सुनाना। तब से ही श्री हरमंदिर साहब को सिखों की सबसे बड़ी ज्यारतगाह का दर्जा हासिल है। अगर गोल्डन टेम्पल के फन तामीर पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि गुरु अर्जुन साहब ने इसकी तामीर इस तरह करवाई थी कि वो इमारत आसपास की सतह से निषेध में बनाई गई। ये बात हिंदू मंदिरों के बरखिलाफ है। हिंदू मंदिरों की तामीर का रिवाज ये रहा है

जान की कसम फिल्म का नगमा आपने कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में सुना। अब सुनिए मोहित चौहान और अंतरा मित्रा को, फिल्म है राजनीति।

0: राजनीति फिल्म के इस दोगाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का गठन 20 वर्ष पहले हुआ था और 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली, जिसके तहत अब तक लगभग 115 बैठकें अलग अलग स्तर की अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं की हो चुकी है, मंत्रियों की और भी लेवल्स पर मीटिंग्स हुई है और जो पूरा क्लाइमेक्स होना है वो सितंबर में जब हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी। सो क्या है ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग का महत्व और किस कहां से ये लाभान्वित कर सकता है जो 11 सदस्य देश है और 10 पार्टनर देश है, और क्या है इसकी थीम, किस तरह से आपसी सहयोग सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, इतने महत्वपूर्ण चर्चा का भाग मुझे बनाने के लिए आपका हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: प्रोफेसर जोशी, जैसा आपने अभिनंदन किया उसमें कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिक्स का महत्व, ये जो उभरते देशों का समूह है, इसका महत्व क्या है, और जो भारत की अगर हम अध्यक्षता की खास तौर से बात करें तो जो ब्रिक्स का जो उन्होंने एक थीम दिया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में भी, इसके पीछे की सोच के बारे में भी अगर आप हमें संक्षेप में बता सके।
3: तो मुझे आपने दो बिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर चर्चा की शुरुआत की है। तो ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता और इसके समिट की मेजबानी भारत के पास है। भारत आज ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। जब हम ब्रिक्स की ओर देखते हैं तो अलग अलग जो ग्लोबल साउथ की मेजर इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक सरकारों का आपसी समूह है जिसमें 11 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका थे, अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी जुड़ गए हैं। ब्रिक्स के पिछले समूह में सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया इससे जुड़ा और इससे इसकी भौगोलिक सीमाओं का भी विस्तार हुआ है। हम देख सकते हैं कि लगभग सभी जितने भी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के देश कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका प्रतिनिधित्व तो ब्रिक्स में है। ग्लोबल साउथ का एक बड़ा प्रतिनिधि प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं और इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में 10 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, नाइजीरिया और वियतनाम जो है इस पूरे ब्लॉक के पार्टनर फ्रेमवर्क का भाग है। 2009 में हम देखते हैं कि ऑफिशियल समिट 16 ब्रिक्स के शुरू हुए और फिर 2011 में जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक्स से इसे ब्रिक्स बनाया, इसके बाद से इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ और अब इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसका एक आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और भारत जैसे कि मैंने कहा ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की थीम के साथ जिससे जुड़े हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और ग्लोबल साउथ के एजेंडा को भारत लगातार योगदान दे रहा है। इस थीम के साथ भारत इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है।
2: सो प्रोफेसर जोशी, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से जो समूह है इसका कहीं की विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, किस तरह से ये बढ़ा है और जो मेजबानी भारत कर रहा है, कितने उन्होंने एक स्पष्ट प्राथमिकता दी है अपने थीम के द्वारा। ये जो पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स शेरपास की 9 और 10 फरवरी को 2026 में, उसमें ये प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई है प्रोफेसर जोशी, जो विदेश मंत्री हैं ब्रिक्स देशों के, उनकी

0: मीटिंग हुई 14-15 मई को 2026 और जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई 25-26 जून को और अभी ओडिशा में जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से सहयोग हो उसको डिस्कस करने के लिए और कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भोपाल में हो रही है। तो आप हमें एक मोटे तौर पर बता सकते हैं कि जब ऐसी मीटिंग्स होती है तो किस तरह का आपसी सहयोग उभर के आता है, क्या प्रोडक्टिव या क्या प्रैक्टिकल आउटकम्स उभर के आते हैं?
1: सर जी, आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है क्योंकि अक्सर हम इस प्रकार के जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी बात करते हैं, इनमें भारत की भूमिका की बात करते हैं, पर इनका भारत जैसे देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की प्रगतियों पर क्या असर पड़ता है ये भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ऑप्टिक्स की यहां पर बात नहीं है, टेंजिबल आउटकम्स की बात है। भारत ने जब 2023 में G20 की मेजबानी की थी, अध्यक्षता की थी, तभी से हम इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के न सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है जिसमें कि ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज को नेतृत्व की भूमिका दिलाना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज और लड़ाई को मजबूत करना, इन सभी देशों की सुरक्षा, अलग अलग प्रकार की जो सुरक्षा है वो अक्षुण्ण रहे इसके लिए प्रयास करना, इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना और इससे जुड़ी फंडिंग को जुटाना, ये तमाम जो लक्ष्य है इनको लेकर के विशेषकर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। तो आप देखिए, फरवरी में ब्रिक्स के शेरपास की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, इसमें जो थीम है, थीमेटिक जो जितने भी एलिमेंट्स है जिनकी हमने बात की, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, इसको लेकर चर्चा हुई। और एजेंडा फिक्स हुआ जो ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी से, पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप से, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। फिर इसको लेकर के हम देखते हैं कि मई में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें सभी सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसके बाद जून में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जुलाई में हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो थीम्स है उसको लेकर के जुड़े हुए जो मंत्री हैं जो आ रहे हैं ब्रिक्स के अलग अलग देशों से और यहाँ हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में जुड़ रहे हैं, तो इससे सोनू जी फिर द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग को और टेंजिबल आउटकम्स में फिर बात करूंगी उसे, जैसे उदाहरण स्वरूप ब्राजील के साथ हमने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बीते वर्षों में अपने सहयोग को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, चाहे वो हमारा बायोफ्यूल अलायंस हो या सोलर अलायंस हो, तो इस तरह से द्विपक्षीय स्तर पर भी सहयोग मजबूत होता है और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी ये जितने भी हमारे एजेंडा है इनको एक नई दिशा मिलती है और योगदान मिलता है।
0: सो प्रोफेसर जोशी, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से प्रैक्टिकल आउटकम्स आते हैं। अगर हम तात्कालिक बात करें तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है भुवनेश्वर में और अगस्त 5 से 7 तक ये मीटिंग होनी है और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो किस तरह की आउटकम्स आप एज एन एक्सपर्ट सोचती हैं कि निकल के आ सकती है, कौन से एरियाज में आपको लगता है कि टेक्निकल, वोकेशनल, एजुकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं या फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स प्रिपेयरनेस की बात करते हैं, इन एरियाज पर भी ध्यान दिया जाएगा?
1: निश्चित तौर पर सोनू जी, और यहाँ पर फिर प्रोफेशनल मोबिलिटी का भी जो बिंदु है वो जुड़ जाता है। भारत जैसा देश जो कि पूरी आबादी, विश्व की जो युवा आबादी है उसकी 22% युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, हम एक युवा देश है, तो ऐसे में ये जो युवा आबादी है, जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को, किस प्रकार से स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र देखें या अलग अलग सामाजिक हम क्षेत्रों को देखें, तो इसमें यूथ पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। अब इसमें फिर शिक्षा से जुड़े हुए एक्सचेंजेस से जुड़े हुए समझौते भी हमारे सामने आते हैं जो कि ब्रिक्स के स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर होंगे। उदाहरण स्वरूप हमारा जो ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च जो है, ICSSR, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च, ये इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है, ये जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इन देशों के युवाओं को जो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, वाइस वर्सा हमारे यहाँ के युवा इन देशों में जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षकों के एक्सचेंजेस, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप और इस प्रकार की जो सुविधाएं और इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो फिर इन मीटिंग्स के बाद हमको टेंजिबल आउटकम्स के रूप में, तो कैसे युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, कैसे एकेडमिशियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में जो है चर्चा की जा रही है सोनू जी।
0: सो प्रोफेसर जोशी, अब ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर आया था, फिर बीच में हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मल्टीलैटरलिज्म थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन अब ब्रिक्स का जो हम एक जो समूह देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग, और जिस तरह से हमने देखा है कि 115 बैठकें हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में और

0: उभर के आ रहे हैं। आपको लगता है कि उभरती टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए, और जो एक आदान प्रदान है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हद तक सहायक है?
1: बिल्कुल सोनू जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हम शक्ति की परिभाषा की ओर नजर डालते हैं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शक्ति की परिभाषा एक म्यूचुअल और टेरिटोरियल शक्ति या पावर तक सीमित थी। उसके बाद 90 के दशक में जब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने दस्तक दी तो किस बेसिस पर या किस शक्ति के बलबूते दस्तक दी? तकनीक की शक्ति के बलबूते दस्तक दी। फिर हमने इंटरनेट, आईसीटी टेक्नोलॉजीज, एमएनसीज को हमारे द्वार खटखटाते देखा। फिर ये जो तमाम ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, इन्होंने अपनी ओपन इकोनॉमी के माध्यम से एफडीआईज के लिए द्वार खोले। और फिर हमने देखा कि ये तमाम देश जो है आर्थिक तरक्की की ओर बढ़े। इन सब में तकनीक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये जो तकनीकी सहयोग है ये आज भी हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग का एक बहुत बड़ा एरिया कह लीजिए या एक एलिमेंट कह लीजिए, जिसके माध्यम से ये जो तमाम देश है, चाहे आप देखिए स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, शिक्षा का क्षेत्र देखिए, आप विदेश नीति को देख लीजिए, आप रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, तो हर कहीं तकनीक जो है उसका एक रोल है। बिना तकनीकी सहयोग के और बिना तकनीकी दक्षता के कोई भी देश आज की तारीख में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो तकनीकी सहयोग है ये फिर न सिर्फ मल्टीपोलैरिटी को मजबूत करता है, ये कहीं ना कहीं शक्ति के अलग अलग जो है पोल्स हमें बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स को भी मजबूत करता है और फिजिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस देश और उसके लोग आपस में एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। तो ये तकनीकी शक्ति है, और ये जो तकनीकी सहयोग है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये ब्रिक्स का एक प्रमुख एजेंडा।
0: प्रोफेसर जोशी, ये सारी उभरती इकोनॉमीज हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो आपको लगता है कि उस संदर्भ में भी बहुत ही एक सिनर्जिस्टिक सिनर्जी है इस समूह में, क्योंकि सब किसी न किसी डेवलपमेंट साइकिल की स्टेज से गुजर रहे हैं, तो उनकी सबकी प्रायोरिटीज आपको लगता है कि साझा है, और इसलिए जो इसके परिणाम भी है वो ज्यादा मजबूत आते हैं ऐसे समूह के?
1: बिल्कुल सोनू जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, विविधता में एकता, हमारे जो ग्लोबल साउथ के लिए देश हैं और विशेषकर जब हम ब्रिक्स के मेंबर नेशंस की ओर देखते हैं जो फुल मेंबर्स हैं, तो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उनकी आर्थिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां भिन्न भी हैं, हम इस बात को भी समझें। जैसे कई देश हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के जो देश हैं वो यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो वे बहुत मजबूत नहीं नजर आते, लेकिन उनके पास एम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स। और भारत जैसे देश जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिनके पास एक बड़ी संख्या में यूथ पॉपुलेशन है, तो यहां से फिर एक सिनर्जी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको क्रिएट होती हुई नजर आती है, जिसमें जिस देश को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति जो दूसरा देश कर सकता है उसके साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आता है। तो जैसे भारत ने घाना, मैं अफ्रीका की बात करूं जी, या नाइजीरिया, या फिर हम लैटिन अमेरिका में चलें तो जो लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, या हम ब्राजील की ओर देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने बायलेटरल लेवल पर कई समझौते किए हैं। और इसी तरह से आप जब इन मेंबर नेशंस को देखेंगी तो इनके बायलेटरली और फिर ब्रिक्स के लेवल पर मल्टीलेटरली कई अग्रीमेंट्स भी हैं, और साझा सहयोग इस प्रकार का है कि जिन देशों को फंडिंग की आवश्यकता है तो उनकी फंडिंग के माध्यम से सहायता की जाए। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आती है, कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर चुके, भारत जैसा देश आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम देखते हैं तो अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनको की फंडिंग की आवश्यकता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी प्रकार से इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां पर फिर भारत जैसे देश जो है वो इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन संसाधनों का हम कैसे उचित प्रयोग कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और किस तरह से एक ग्लोबल लेवल पर हम एक अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, तो इसमें भारत सक्षम है। तो ये एक सिम्बायोटिक हमको सिनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है।
0: भारत का जो नेतृत्व रहा उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक और पहलू रहा जिसमें भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया?
1: बिल्कुल, 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब भारत की न सिर्फ सराहना हुई थी वैश्विक स्तर पर, बिना किसी एक भी डिसेंट के दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था, और तमाम अलग अलग वैचारिकता रखने वाले देशों ने भी एकजुट होकर के भारत का जो एजेंडा था और जिस तरह से भारत ने G20 की मेजबानी की उसकी बहुत सराहना की थी, उसी प्रकार से भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि भारत शांति और सुरक्षा की बात करते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात करते हुए आपसी सहयोग की बात करता है, जिसमें वो विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इसमें जो लाइक माइंडेड देश है जिसमें ब्रिक्स के भी सदस्य देश शामिल है वो भारत के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो भारत की बहुत महत्वपूर्ण पिवोटल केंद्रीय भूमिका है न सिर्फ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर, बल्कि यदि मैं ओवरऑल वैश्विक राजनीति की बात करूं तो सोनू जी, भारत आज जिस मंच में जाकर के

0: प्रभावी होता है और वहां से फिर हम देखते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग जो है वो निरंतर प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है।
1: प्रोफेसर जोशी, थैंक यू सो मच। आपने ब्रिक्स पर, खासकर भारत के जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की अभी 2026 में अभी चल रही है, उस पर इस समग्र चर्चा की हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेड डिश पर। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। भारत और सिंगापुर ने भारत सिंगापुर जामी कलीदी शराकतदारी के खाके में उजागर 8 शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदाइशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। न्यू मैक्सिको अदालत ने मेटा को उसके प्लेटफॉर्म से नौजवानों को पहुंचे नुकसान के पेश नजर 5,67,00,000 अमरीकी डॉलर अदा करने का हुक्म दिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूअर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। और बैडमिंटन में आज आसाम में अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और सिंगापुर में जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में 2 तरफा तावन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनाकिद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रविन रुद्रेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकी सेक्रेटरी लुक गोम ने की तफरी इलाकाई और आलमी हालात व वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अवी और इलाकाई फोरम्स में करीबी ताउन और बाहमी रबता नहायत अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट IIT की 57वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब के दौरान 3,000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 PhD स्कॉलर्स से भी जिन्हें डिग्रियां अता की जाएंगी खिताब करेंगे। नरेंद्र मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेजिडेंस गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार इजाजत भी नवाजेंगे। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघे का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में एक कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस नए मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर मामलिकत पवित्र मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इकतसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तामों को तस्लीम करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशोखरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आजादी के हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं। हथकरघे का कौमी दिन 1905 में उसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज की याद में हर

0: 7 अगस्त को मनाया जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। वोल ऑफिस में गुफ्तगु करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीम शुदा इस्तेमाली सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमे खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वह बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवानों को पहुंचने वाले नुकसान के इजाले के लिए 567 मिलियन अमरीकी डॉलर अदा करने का हुक्म दिया है। ये इस संगमील केस का दूसरा मरहला है जिसमें कंपनी को मार्च में शिकस्त हुई थी। जज ब्रायन वीडशाइड ने फैसला सुनाया कि कुल फंड्स में से 420 मिलियन अमरीकी डॉलर नौजवानों के इलाज व मुआवजे की खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जबकि बाकी रकम अगले 5 साल के दौरान दारी और रोकथाम के प्रोग्रामों, स्क्रीनिंग की खिदमत और दीगर मुतल्लिका अखराजात के लिए फराहम की जाएंगी। सदासा ने जज से दरखास्त की थी कि वह मेटा पर ऐसी बुनियादी तब्दीली आयद करे जिनका मकसद नुकसानदेह आदात को फरोग देने वाले फीचर्स पर काबू पाना, उम्र की तस्दीक के निजाम को बेहतर बनाना और तयशुदा प्राइवेसी सेटिंग और सख्त निगरानी के जरिए बच्चों के जिनसी इस्तेमाल को रोकना है। तमाम अदालत लाजमी तौर पर उम्र की तस्दीक का हुक्म देने से इनकार कर दिया। अदालत ने वाजह किया कि बच्चों की प्राइवेसी के वफाकी कवानीन मेटा को 13 साल से कम उम्र बच्चों के लिए उम्र की तस्दीक के आलात नाफिज करने से रोकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी रियासत के असम्बली हल्कों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असर नौ तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असम्बली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। भारतीय गजट में शायद करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से यह कानून नाफिज होगा जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की दरीना मांग पूरी होगी और हल्के की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस अकदम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉ प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह एक्ट दर्ज फहरिस्त कबाइल बिरादरियों के लिए दरीना इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉ सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमू हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंटर लुइस रैपिड और ब्रिज खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावेखिर सिमरोव के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंद ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। بیڈمنٹن میں آج آسان میں بھارت کی اشمیتا چالیہ کوریا ماسٹرز میں خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. اشمیتا نے نمبر ایک کھلاڑی جاپان کی ہینا اکیشی کو 20-22 21-15 21-19 سے ہرایا. اس سے قبل وہ جنوبی کوریا کے کھلاڑی کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی تھی. خواتین ایشیا کپ 2026 کے سب سے اہم مقابلے میں 5 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. ایشین کرکٹ کاؤنسل ایس سی سی نے 28 اگست سے دبئی میں ہونے والے خواتین ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2026 کی تاریخوں کا کل اعلان کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور سنگاپور نے بھارت سنگاپور جامع کلیدی شراکت داری کے خاتے میں اجاگر 8 شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے. نیو میکسیکو عدالت نے میٹا کو اس کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو پہنچے نقصان کے پیش نظر 5.67 کروڑ امریکی ڈالر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے امریکہ میں گرینڈ چیس ٹور سینٹ لوئس ریپڈ اور بلٹس خطاب جیت لیا ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں اشمیتا چالیہ کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات جاری ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

वीडियो वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत और सिंगापुर ने भारत सिंगापुर

0: सलेहा कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। दीगर प्रोग्रामों के अलावा 3:30 पर आप सुन सकेंगे पंडित भीमसेन जोशी से की गई गुफ्तगू की एक पुरानी रिकॉर्डिंग। फिलहाल दीजिए इस मजलिस से हमें इजाजत।
1: कहानी को दर्शाती है दोस्तों, जिससे उसका बेटा अनजाने में ही अदालत में उसकी मामले की पैरवी करता है। आगे करेंगे फिल्म की और भी बातें। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा नगमा।

1958 की फिल्म अदालत है आज हमारी एक ही फिल्म की कहानी में, और इस सफर में आज आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा है, जो आपको लेकर चल रही है इस सफर के साथ, गाते गुनगुनाते और इस फिल्म की बहुत सी बातें बताते।

0: करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, हमारे इस सफर में आप हैं हमारे साथ, एक ही फिल्म से का ये सफर। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें संदेश भेजकर बताना ना भूलिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म से जुड़ी हुई, और फिल्म है हमारी 1958 की फिल्म अदालत। फिल्म की कहानी निर्मला यानी कि नरगिस और बैरिस्टर राजेंद्र सिंह जो प्रदीप कुमार के अभिनय में हैं, उनके इर्द गिर्द ही घूमती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर पारिवारिक विरोध उनके सामने आता है और सामाजिक परिस्थितियों के कारण निर्मला को अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है उसके बाद कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है और निर्मला का बेटा जो बड़ा बेटा है वो एक अभियोजक के रूप में सामने आता है, वो वकील बन जाता है और अनजाने में एक हत्या के मामले में निर्मला पर ही मुकदमा चलाता है। इस तरह ये फिल्म की कहानी आरोप और प्रत्यारोप के बीच आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हम इसकी बातें और आगे बताएंगे। आपको जानकारी कैसी लग रही है आप संदेश लिखकर भेजना ना भूलिए, और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म का।

साचा निर्देशक कालिदास की फिल्म अदालत के लिए संगीत मदन मोहन ने तैयार किया था और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। इसके कई गीत गजल नुमा और मधुर गीत बहुत लोकप्रिय आज भी होते हैं, जैसे आप अभी इस गीत में खो गए थे। और हमने आपको कहा था कि आप हमें संदेश लिखकर भेजिए, बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। इस संदर्भ में हमारे सामने बहुत सारे संदेश हैं कि पहला मेल है राधे श्याम देवांगन जी का, ये है इंदिरा नगर भंवरपुर से और इनके साथ चंपा देवांगन जुड़ी हुई हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुदर्शन मुखी हैं हमारे नियमित श्रोता साथी और उनका जो संदेश है वो हमारे पास आ चुका है, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। उनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ी हुई हैं शांति नगर सोनीपत से, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को इसी तरीके से सराहने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा हैं और उनके साथ पूनम गंगनेजा हैं जो कार्यक्रम को बहुत गौर से सुन रहे हैं। और उसी तरह एक ही फिल्म से अदालत फिल्म की ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है और ये लग रही है अच्छी जिन्हें, वो है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और हैं हमारे श्रोता साथी गांव फरासी जिला हसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और ये फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी थी जी। हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि आज आपकी पसंद की फिल्म की बात हो रही है। उसी तरह हमारे पास है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का संदेश, ये है धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र छीपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका दोबारा संदेश हमारे पास आया है। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, उन्हें भी जानकारी अच्छी लग रही है और इस फिल्म के गीत उन्हें बहुत पसंद है जी, बहुत शुक्रिया। और संदीप मक्कर हैं, ये हैं संदीप मक्कर हैं और इनके साथ ज्योति हैं, मन्नत हैं, भारत हैं, कमल हैं और ये जुड़े हुए हैं पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर से, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। इतनी दूर दूर से जब आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं तो सच में हमारा हौसला और बढ़ जाता है। संजय साहू पोटिया कला से हैं और इन्हें फिल्म अदालत की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, ये उनकी पसंदीदा फिल्म भी है जी, बहुत शुक्रिया। वनिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस हैं, पिंकी लवली आरती अरोड़ा हैं और दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा हैं, जानकारी अच्छी लग रही है। जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु हैं, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान असरार और नरगिस खातून हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ये दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें लिख के भेजते हैं जी, आपके संदेश मिलने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। लेकिन हम अब बात करते हैं अपनी फिल्मों की, आप गौर से सुनते रहिए इस फिल्म की जानकारी जो है 1958 की अदालत फिल्म। और चलिए अभी सुनते हैं हम इस फिल्म का एक वो गीत जो आप सबको बहुत ही पसंद होगा और इसे हम सभी अक्सर अपने गमगीनी के समय में गुनगुनाते ही हैं, तो सुनिए और लुत्फ लीजिए।

ये फिल्म प्रेम, विश्वासघात, भाग्य और सामाजिक न्याय के मुद्दों को सामने दर्शाती है और इस तरह इन मनोभावों को छूते हुए एक मकाम पे पहुंचती है। अभिनय और निर्देशन जो निर्गिस ने निर्मला के किरदार में बेहद भावुक और शक्तिशाली अभिनय दर्शाया है, उसे हमारे फिल्म के चहेते कभी भूल नहीं सकते। और आलोचकों और दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत सराहा था दोस्तों। प्रदीप कुमार ने भी एक बैरिस्टर के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी इस फिल्म में। और जो निर्देशक कालिदास हैं, उन्होंने समाज के संघर्ष को पर्दे पर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था इस फिल्म के जरिए। और इस फिल्म का संगीत जो मदन मोहन का था, वो तो एक से बढ़कर एक संगीत है जिसे हम ऐसे ही गुनगुनाते हैं। तो चलिए एक और मधुर सा ये संगीत हम गुनगुनाते हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ।

भाई अंत में हम तो आपको यही कहेंगे दोस्तों कि 1958 की अदालत सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि इंसाफ की, रिश्तों की और जिद की कहानी है। देखिएगा जरूर, फिल्म मिलेंगे किसी नए सफर में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संसद ने सोखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोच बिल 2026 पास कीता। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई नीट समेत वख-वख मुद्दयां ते विरोधी धिर वल्लों कीते गए हंगामे कारण दिन भर लई मुलतवी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथखड़ी खेतर समावेशी विकास लई इक शक्तिशाली माध्यम है। उन्हां साल 2025 लई संत कबीर हथखड़ी पुरस्कार ते राष्ट्रीय हथखड़ी पुरस्कार प्रदान कीते। मिजोरम दे मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने अज नवी दिल्ली च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करके वख-वख मुद्दयां ते चर्चा कीती। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका च ग्रैंड चैस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड बिल्ड दा खिताब जित्तिया। संसद ने लोकसभा की मंजूरी तो बाद आज सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 पास कर दिता है। राज्यसभा ने यह बिल सोमवार नूं पास कीता सी। पहली बार मुलतवी तो बाद जदों सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे मुड़ शुरू हुई तां सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां बारे मंत्री जतन राम मांझी ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास एक्ट 2006 विच होर सोध करने लई बिल पेश कीता। इस बिल का उद्देश अदायगी च देरी नूं हल करना ते विवाद ते हल नूं सरल बनाउणा है। बिल विच यह व्यवस्था की गई है कि जेकर कोई मामला 6 महीनों तो वध समय तो बकाया पे ता दित्ती गई रकम का घट्टो घट 50% सप्लायर नूं अदा किया जाना चाहिए। बिल पास होने तो बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप सैकिया ने सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की थी, पर प्रदर्शन कर रहे मैंबरां नूं सदन नूं काम करन देन दी अपील भी की थी। उन्होंने कार्रवाई च पाए जा रहे विघन ते नाराजगी जाहिर करदिया कहा कि अजिहा विरोध देश के लोकतंत्री ढांचे लई उचित नहीं है। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी धिर के विहार से चिंता प्रगट करदिया कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इजलास दौरान हमेशा संसद विच आउंदे ने ते देर रात तक उथे मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहने कारण प्रिजाइडिंग अफसर ने सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विरोध विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दों ते विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। सदन की अगली बैठक हुण सोमवार नूं सवेरे 11 बजे होगी। पहली बार मुलतवी होने तो बाद जदों दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तां सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विरोधी धिर के हंगामे दौरान प्रश्नकाल की शुरूआत की थी। हंगामे दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विच कवच ते सिग्नलिंग प्रणालियां की स्थापना नाल जुड़े एक सवाल का जवाब देना शुरू किया, पर रौले रप्पे कारण वह अपना जवाब पूरा नहीं कर सके। इस दौरान विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह तो नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई बारे सदन च बयान की मांग की। हंगामा जारी रहने कारण सभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी। इस तो पहला जदों सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति सीवी राधाकृष्णन ने दस्या कि 9 अगस्त नूं भारत छड्डो अंदोलन की 84वीं वरेगंढ है, जिसकी शुरूआत महात्मा गांधी की दूरअंदेशी अगवाई हेठ की गई सी। सभापति ने आजादी संघर्ष के शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथखड़ी खेतर न सिर्फ रोजी रोटी का साधन है सगों समावेशी विकास लिए एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आज नवी दिल्ली च 12वें राष्ट्रीय हथखड़ी दिवस समारोह नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि हथखड़ी हजारां सालों तों भारत के सभ्याचार ते सभ्यता का एक अनिखड़वां अंग है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथखड़ी खेतर विशाल रोजगार के मौके प्रदान करता है। उन्होंने दस्या कि देश के हथखड़ी खेतर च 35 लाख तो वध लोग लगे हुए ने, जिन्हां विचों करीब 25 लाख औरतां ने। उन्होंने कहा कि हथखड़ी भारत के आजादी संग्राम ते स्वय निर्भरता की भावना नाल टुकाई नाल जुड़िया हुआ है।
2: हजारों वर्ष से हथकरता भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने देश के बुनकर डिजाइनर विद्यार्थियों के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सारे लोगों को बधाई दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस मौके कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकड़ी नूं एक पायदार ते वातावरण अनुकूल कपड़ा उत्साहित करने लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालां च हथकड़ी उत्पादों की मांग वधन की उम्मीद है। समागम दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2025 लई संत कबीर हथकड़ी पुरस्कार ते राष्ट्रीय हथकड़ी पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके देश दी अमीर ते वख-वख हथकड़ी बुनाई रवायतां नूं समर्पित चार यादगारी डाक टिकटां जारी कीतीआं गईआं। इस मौके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

0: Parts of northern India. In chess, Grandmaster Atvagyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले की सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृहमंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद

0: ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश के समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परम्परा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित

0: भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया। कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर आया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा की आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और दक्षिण राम राज तथा अश्मिता।

आकाशवाणी दिल्ली का ये हिंदी प्रस्तुत चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

जारी। कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है हमारा एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं, उस शख्सियत के लिए मैं कुछ लाइनें कहूंगी। न शब्दों की बंदिश न सुरों का गुमान, जब भी वो गाते हैं थम जाता है जमाना और खिल उठता है आसमान। जी हाँ, इन लाइनों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किसी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति को, किसी उस शख्सियत को लेके आए हैं जो कि संगीत से जुड़ी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बेहद ही खास दिन है। जी हाँ दोस्तों, आपने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि आज उस आवाज का जन्मदिन है जिसने बनारस के घाटों की शांति अपनी आवाज में ली। सावन की पहली बारिश की जो मिठास है वो भी उसकी आवाज में है। और अगर हम बात करें भारतीय संगीत की सादगी या शास्त्रीय संगीत की गहराई की, तो सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो नाम वही है, यानी कि सुरेश वाडकर जी। जी दोस्तों, आज का हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो समर्पित है सुरेश जी को, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और ये वो सुरेश वाडकर जी हैं जिनकी आवाज ने चार दशकों से भी ज्यादा वक्त से हमारे दिलों को छुआ है अपने सुरों के जरिए। तो लीजिए करते हैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं की खूबसूरत से इस तराने के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडकर जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ 7 अगस्त सन 1955 को। सुरेश जी जो हैं वो बहुत ही कम उम्र के थे जब उन्होंने अपनी संगीत की जो तालीम थी वो शुरू की। संगीत की जो शिक्षा दीक्षा है उन्होंने ली आचार्य जियालाल बसंत जी से, और उन्होंने संगीत की बारीकियों को सीखा उनसे, और पंडित जसराज जी के साथ उनके सानिध्य में उन्होंने अपने सुरों को और भी ज्यादा निखारा। आचार्य जियालाल बसंत जी का जो मानना था, उन्होंने जो देखा कि सुरेश जी के अंदर बहुत प्रतिभा है, और यही देखते हुए उन्होंने सुरेश वाडकर जी से कोई फीस भी नहीं ली। बहुत कड़ा रियाज किया, सुबह तड़के उठकर वो घंटों रियाज किया करते थे, और कई बार तो उनके खाने पीने या रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उनके लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संगीत की जो शिक्षा दीक्षा थी उसको उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह थी कि जब थोड़ा बड़े होने पर उन्होंने एक प्रतियोगिता सुर सिंगर सम्मेलन जीती, और उसमें जीतने के बाद उनको उम्मीद थी कि शायद उनको बहुत सी फिल्में मिलेंगी, तुरंत उनको बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्टूडियो के इधर उधर चक्कर काटते रहते थे, संगीतकारों को ऑडिशन देते रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो दौर था किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश साहब जैसे दिग्गजों का।

ऐसे टाइम में किसी एक नए गायक को अपनी जगह बनाना वाकई में बहुत ही मुश्किल, मतलब आप कह सकते हैं कि एक असंभव सा काम था। लेकिन जयदेव जी ने अपने मौका दिया अपनी फिल्म गमन में, जो कि सन 1978 में आई। और इस फिल्म का जो एक गीत है उन्होंने गाया, उसके बाद उनकी जिंदगी में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। लेकिन इस गीत को गाने के बाद में, गाने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो जयदेव जी थे वो चाहते थे कि सुरेश जी अपनी गजल की जो हर बारीकी है उसके दर्द को पूरी तरह से महसूस करें। और यही वजह थी कि रिकॉर्डिंग से पहले जयदेव जी उनको अपने घर बुलाया करते थे, उनको बुला करके घंटों शास्त्रीय संगीत के रियाज, शेरो शायरी के मिजाज पर चर्चा करते थे। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो इसकी सादगी और इसकी गहराई ने रातों रात सुरेश जी को संगीत प्रेमियों का एकदम फेवरेट बना दिया। और यही वो गाना है जिसके बाद सुरेश जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही उनकी चाल थोड़ी स्लो थी, लेकिन पहुंचे वो एकदम ऊंचाइयों तक। तो लीजिए सुनते हैं वही नायाब सा गीत फिल्म गमन से।

क्या बात है, क्या आवाज, क्या गहराई है इस आवाज में। वाकई में दोस्तों, गमन फिल्म के बाद सुरेश वाडकर जी की जो आवाज का जादू है वो ऐसा चला कि उस दौर के हर बड़ा संगीतकार, चाहे वो आर डी बर्मन साहब हो, शिव हरी हो या फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी हो, सब ने, जी हाँ, सब ने सुरेश जी को अपनी आवाज की, उनकी जो आवाज थी उनको अपनी धुनों का हिस्सा बनाना शुरू किया। खासकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जो जोड़ी है उनके साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, चाहे फिल्म क्रोध हो, प्रेम रोग हो, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के गाने सुरेश जी को हर घर की आवाज बना दिया। वैसे आपको मालूम है राज कपूर साहब जो हैं वो अपनी फिल्मों में संगीत को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, और फिल्म प्रेम रोग के लिए जब सुरेश वाडकर जी ने गानों की रिकॉर्डिंग की तो राज कपूर साहब उनकी आवाज में शास्त्रीय संगीत की जो पकड़ थी, जो पहुंच थी, उसको देखकर हैरान रह गए। और उन्होंने गाने की जो रिकॉर्डिंग की उसके बाद राज कपूर साहब इतने ज्यादा इमोशनल हुए, इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने सुरेश जी को अपने गले लगाया और कहा कि भाई, तुम्हारी आवाज में वो मासूमियत है जो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को पूरी तरह से जिंदा कर देती है। तो लीजिए, सुनते हैं सुरेश जी की आवाज में एक और खूबसूरत संगीत फिल्म प्रेम रोग से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं सुरेश वाडकर जी के बारे में। लेकिन हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव जानवी और दर्श राजपूत। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। इनके साथ हैं खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और वडिंग खेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू, थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित केशुरदान खुराना हमारे साथ जुड़े। मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेराज के साथ, शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान उत्तम जमदाड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला हिंगोली महाराष्ट्र से। गांव फरासी जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांतिनगर सोनीपत से। बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया और ये अगला संदेश छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से जुड़े हैं आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग जी के साथ में। और दोस्तों, ये जो अगला संदेश है उसको हम तक पहुंचाने वाले हैं इंद्रप्रस्थ दिल्ली, ये भेजा है संदेश पुरानी भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद, शहनवाज अहमद और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं देवशंकर तामुरिया, जयदेव पोता मास्टर अलकबीर हमारे साथ जुड़े हैं और मेहरहारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये जो अगला संदेश है इसको एक बार फिर से भेजा है स्वर्ण सिंह जी ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और लीजिए सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेंद्र जी और सुरेश वाडेकर जी की आवाज में।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने बात की सुरेश वाडकर जी के बारे में। उन्होंने न जाने कितने अनमोल नगमों को जिया, लेकिन सुरेश जी के लिए हम यही कहेंगे कि वो एक सिर्फ गायक नहीं है बल्कि भारतीय संगीत के वो पिलर हैं जो कि इस शास्त्रीय परंपरा को सुगम संगीत के साथ, सादगी के साथ जोड़ते हैं। और अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों के बारे में, उन्हें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, क्या क्या पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर भारत सरकार के द्वारा सम्मानित पद्मश्री तक हर पुरस्कार उनकी साधना के आगे छोटा नजर आता है। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार हो या फिर संगीत नाटक एकेडमी सम्मान, मतलब अगर हम देखें तो सम्मान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो उनको प्राप्त है। और उन्होंने अब एक आजीवासन के नाम से एक संस्थान शुरू किया है जहां पर वो पिछले कई दशकों से अपनी इस गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको जीवित रखे हैं और हजारों कलाकारों के सुरों को तराश रहे हैं, संगीत की नई पीढ़ी को वो तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आवाज का ये जो मीठा सा जादू है यूं ही सालों साल हमारे दिलों पर राज करता रहे। उन्हें जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां। और अब ये सफर यहीं तक, मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि 3 बजे एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ ये खूबसूरत सा गीत। तब तक के लिए नमस्कार।

मोदी कल दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट IIT की 57वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आजम तकरीब के दौरान 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 PhD स्कॉलर से भी जिन्हें डिग्री अदा की जाएंगे खिताब करेंगे। जनाब मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेजिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार एजाजात से भी नवाजेंगे। भारत और चीन के दरमियान कल नई दिल्ली में मुनाकिदा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की 36वीं मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और खुलकर बातचीत की गई। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि दोनों फरीकों ने सरहद की हदबंदी, सरहदी इंतजाम, निजाम साजी और सरहदी ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया गया कि दो तरफा ताल्लुकात के मजमू फरोग के लिए सरहदी इलाकों में अमन व अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखना जरूरी है। दोनों फरीकों ने बाकी मानदा मसाइल को हल करने और LAC पर किसी भी गलत फहमी या गलत तखमीने से बचने के लिए WMCC मकामी कमांडर सतह की मीटिंगों और दीगर तयशुदा तरीकों समेत मौजूदा सिफारती और फौजी जराये का इस्तेमाल जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज संत कबीर हथकरघा अवार्ड और 2025 के हथकरघे के कौमी अवार्ड अदा किये। 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड समेत कुल 22 अवार्ड हथकरघे के बुनकरों को उनकी कारीगरी, इख्तिरा और भारत के हथकरघे की रिवायात को जारी रखने पर दिए गए हैं। आज नई दिल्ली में हैंडलूम के 12वें कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों साल से हथकरघा भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा रहा है। सदर जमहूरिया ने बुनकरों, छोटे कारोबारियों, डिजाइनर्स, तलबा और भारत के हथकरघे के शोबे से वाबस्ता हर एक शख्स को नेक ख्वाहिशात भी पेश की। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने हर एक शहरी से जोर देकर कहा कि वो आज हथकरघे के कौमी दिन का जश्न पूरे जोश और खरोश के साथ मनाए। शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए औसत दर्जे से लेकर शदीद बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इम्कान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इस माह की 12 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, केरला, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज दिन में शदीद बारिश का इम्कान है। सरगर्दा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ग्रुप ने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि इस्लामाबाद के नए गैर मुल्की मीडिया फैसिलिटेशन रहनुमा खतूत 2026 वापस ले। ग्रुप ने इन जब्तों को सख्तगीर और जालिमाना करार दिया है और खबरदार किया कि वह पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फैल रही बेचैनी और अबतरी की कवरेज को सेंसर करेगा। उसने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बैन अल-अक़वामी अखबारों की जानिब से पुरअमन मुजाहरीन के साथ झड़पों के दौरान पुलिस की वहशियाना कार्रवाई और मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करने की इतराज देने के बाद वहां इंतखाबी इसलाह की मांग कर रहे मुजाहिरों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। ये नए रहनुमा खतूत कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके में बढ़ती बेचैनी के पसमंजर के बाद नाफिज किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर्नामेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंदारोव के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंद 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। इससे कल जून में प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतकर तारीख रकम की थी। बैडमिंटन में आज आसान में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालक
कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़ हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीम बिल को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी

0: सेवन रकबे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मारूफ गुलूकार, क्लासिकल गुलूकार पंडित भीमसेन जोशी के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी डॉक्टर श्रीरंग सांगुराम जी ने।
1: जी, आप हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र के मूर्धन्य कलाकार हैं। आपने अपने स्वर्गीय गायन से भारत के ही नहीं विदेश के भी अनगिनत गान रसिकों को तृप्त किया और कर रहे हैं। पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित हुए हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि बचपन में आप पर संगीत के संस्कार कैसे हुए?
2: मेरे घर में मेरी माँ गाती थी और उन्होंने मुझको पुरंदरदास भजन सिखाया। मुझे गाने का शौक तब से शुरू हुआ और उसी वक्त हमारे गुरु के गुरु खान साहब अब्दुल कलीम खान साहब की पहली रिकॉर्ड निकली थी। आज के जैसा पेपर में एडवर्टाइजिंग देने का वगैरह वो समय नहीं था, तो जो डीलर होता है वो तो सुबह से शाम तक रिकॉर्ड ही लगाते थे। मैं सुबह से शाम तक वही बैठा रहता था।
1: अच्छा,
2: सुन सुन के उनका वो बसंत की चीज है को पिया भी नहीं आता। ये सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा हुई।
1: फिर ऐसा भी एक इत्तेफाक हुआ कि आपके गुरुवर सवाई गंधर्व का भी एक रिकॉर्ड सुनने को आपको मिला।
2: सवाई गंधर्व जी का रिकॉर्ड नहीं सुना, उनका जलसा अच्छा था मेरे गांव में, तो उस वक्त मैंने सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ। उस वक्त भी उस दिन से मेरे दिमाग में अच्छा गाना आना चाहिए और मेरे गांव में इतने अच्छे गाने वाले नहीं थे। ऐसे ही प्राथमिक शिक्षा देने के लिए वो घर में आके सिखाते, उससे मन तृप्त नहीं होता था,
1: तो इसलिए आप चल पड़े उधर से।
2: जब मैं 12-13 साल का था तो घर में बोला भी नहीं, वहां से चला,
1: वैसे चल पड़े। इसमें कहाँ गए?
2: पूरा गया, मुंबई गया। मुंबई से ऐसे करते करते ग्वालियर पहुंचा। इसमें उस वक्त के जो रेलवे के अफसर होते हैं, कोई गाने का शौकीन हो तो वो खिलाता था, नहीं तो अपना बस ऐसे बैठे रहे। और वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर था तो पकड़ के जेल में डालते थे। ठीक है, खाना तो मिलता है ना उधर। ऐसे करते करते मैं ग्वालियर पहुंचा।
1: तो वहाँ पे माधव संगीत विद्यालय आप गए?
2: हाँ जी, मैं उधर भी जाता था क्योंकि उस वक्त

0: स्टेट था, तो जो माधव संगीत विद्यालय में गाना सीखता है उसको एक समय का भोजन मुफ्त में मिलता था। तो ऐसे वहाँ सीखता था, हम एक कुंडल गुरु करके थे, बाला साहेब थे, अच्छे रहते थे। और उसके बाद ये हफीज अली खान साहेब, वो भी शाम को अपना खटिया डाल के बस आराम से बैठे, मैं उधर भी जाता था, उन्होंने भी मुझको पढ़ा मारवा सिखाया। उस वक्त का जो कलाकार थे, वहाँ कॉन्फ्रेंस को निकले तो वो दो महीने तक आते ही नहीं थे, और हमारे लिए तो बहुत ही दिक्कत हो गई। तो मैं उधर से फिर खड़प हो गया, वहाँ टीचर को रखे करके एक राजा भैया जी के ही शागिर्द थे, उनके पास आया। लेकिन ये इतना ट्यूशन करते थे, सुबह 8 बजे निकलते, रात को 10 बजे वापस, उसको सिखाने के लिए
1: वक्त नहीं मिलता था,
0: वक्त ही नहीं मिलता था और सीखती भी नहीं रहती। मैंने कहा ये कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर कलकत्ता गया, पहाड़ी सान्याल के यहाँ,
1: वहाँ पहाड़ी सान्याल के यहाँ आप रहे?
0: हाँ, मैं नौकर था, उनका भी यही हालत, सुबह गए तो शूटिंग के लिए पिक्चर का, तो अभी रात को ही आते थे, आने के बाद बस खाना खा के सो जाते थे, उसमें तालीम की क्या बात है।
1: ये साहब की यात्रा में बहुत कष्ट भी उठाने पड़े होंगे आपको।
0: ये तो अभी
1: खाना पीना रहना
0: कुछ नहीं, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। वहाँ से फिर तंग आके दिल्ली गया, आपने सुना होगा नसीरुद्दीन का साहब,
1: सुना है?
0: उनके चाची आए, आप पिताजी थे, उन्हें गंडा बांधो हमारा, तब गाना सिखाएंगे। अब कहाँ से बांधो गंडा,
1: मेरे से कुछ है नहीं,
0: मैं तो कुछ है नहीं। फिर नहीं हो सकता है। वहां से फिर मैं जलंधर गया, वहाँ अनुगायक थे मंगत राम, वो झूपन सिखाते थे। मैं कहा ठीक है चलो, झूपन ही सीखेंगे। साल भर मैं उधर रहा, आपने सुना होगा हरिवल्लभ का
1: बड़ा मेला लगता था वहाँ, आज भी लगता है।
0: वो वहाँ गाने के लिए देश के सभी अच्छे अच्छे कलाकार आते थे। अब एक दफा विवेक राव जी पटवर्धन आए, कोई भी आए तो हम अपने पीछे तानपुरा छेड़ने के लिए तैयार थे। बोले तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं ध्रुपद सीख रहा हूँ। अरे तुम्हारा गांव गजक ना, धनी कुंदगोल में इतनी बड़ी हस्ती है, उनके पास जाओ। फिर जैसे गया था वैसे ही वापस। जाने के टाइम में भी टिकट नहीं, पैसा नहीं, आने के टाइम में भी नहीं। ऐसा करते करते घर पहुंच गया। लेकिन एक फायदा हुआ, जलंधर में रहने से हवा पानी अच्छी, और कसरत भी करता था, तो 4 बजे उठ के ठंडा पानी से नहा लो। उसके बाद वहाँ एक कृष्णा ऑयल मिल थी,
1: अच्छा,
0: उसके जो मालिक थे वो हमारे भगत राम जी के मित्र, उन्होंने बोला ठीक है हमारे तरफ से तुम खाना खाते चलो, भाई को बोल दिया। उस वक्त क्या 4 आने में खाना मिलता था, और एक बड़ा ग्लास भर के दूध क्रीम डाल के एक दफा खाने से फिर शाम को
1: मलाई के साथ दूध पिया, एक दिया आपने। लेकिन ये जो बाहर जाकर के आपने ये सब साधना की, तो वहाँ पे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ, उससे लंबाई भी बड़ी होगी।
0: हाँ जी, उसी वक्त का लंबाई है अभी।
1: अच्छा, आपने इतनी सारी साधना करके किराने घराने की परंपरा को विकसित किया। अब इस परंपरा को विकसित करने में आप पर अपने गुरुवर का तो असर है ही, लेकिन हम जो आपका यहाँ गाना सुनते आए हैं उसपे हमने महसूस किया है कि किराना घराने की जो स्वरमयता है उसमें आकृतिमयता ला करके उसको एक नया आपने आयाम दिया। तो इसके लिए आपने कुछ कुछ प्रयोग किए गायन में, किराना घराने की आत्मा को कायम रखते हुए, उसके संबंध में कुछ हम जानना चाहते हैं।
0: आज तक जो आपने अगर संगीत का इतिहास देख लिया, जो अच्छे गाने वाले हैं उसे यही करते थे, अपने को अगर नाम कमाना है जी, अपना भी कुछ चाहिए ना उसमें, ये जब तक नहीं होगा फिर क्या बोलते हैं, गुरु ने जो बताया वही गाता है, गुरु से कंपेयर करते हैं। अपना कुछ रहने के बाद उसमें अगर रंजकता लाने के लिए, और जितने उस समय के कलाकार होते हैं, पहले हमारे समझ में भी नहीं आता कि हमारे गायकी में जो कुछ अच्छा लगता है, सब घराने का सुंदरता लेके अपनी एक अलग मिट्टी तैयार।
1: अब इस किराना घराने में बहुत से गायक एक ताल में ही अपना ख्याल प्रस्तुत करते हैं, आपने उसको त्रिताल का आयाम दिया, ऐसा आप कहते हैं।
0: त्रिताल ये तो अपने अपने मन पसंद की बात है, लड़ाई तो वही रहती है, मात्रा गिनने में इधर उधर होता है, इसमें 12 उसमें 16, 12 में 16 करना आसान।

0: लेकिन तुलना में 12 करना मुश्किल है और रंजकता ज्यादा है मेरे ख्याल से। अब एक बात और है कि आप आला दर्जे के ख्यालिया हैं, ख्याल को आपने जो एक सुबद्ध, एक चुस्त, एक ठोस रूप दिया है उसका जवाब नहीं है, तो इस ख्याल को इतना सारा सुंदर रूप और इतना चुस्त रूप देने के लिए आपने और लोगों से कुछ कुछ प्रेरणाएं ग्रहण की होंगी, उसके संबंध में कुछ बताइए।
1: देखिए मैं जब गाने लगा तो अमेरिका साहब, गुरु गुलाम मिल्ली
0: जी,
1: केसर भाई, इनका सब मैं इतना जल्दी गाना शुरू नहीं किया, उम्मीद में गाने की उम्मीद नहीं थी सुनने का, 5-10 साल सुन लिया,
0: हाँ हाँ,
1: और उसके बाद आस्ते आस्ते शुरू किया।
0: गुरुजनों की संगत आपने बहुत की, आप तो बताते हैं कि तबलियों की भी संगत आपने।
1: हाँ, वो हमने सोच देखी है, किशन महाराज के पिताजी कंटे महाराज, किशन महाराज, अनु खिलाल, शहीदुद्दीन सभी वाले,
0: शरकवा साहब भी थे उसमें,
1: गोपाल मिश्रा बनारस,
0: हाँ,
1: उसके जैसा गले के लिए संगीत करने वाला मैंने नहीं देखा। उसके बाद सब सारी मिलिया है, अलग आप
0: जी
1: सुनने में नहीं आता।
0: सवाई गंधर्व में भी आपके साथ उन्होंने
1: मजा ही थी।
0: हमने केसर भाई जी का और आपका परिचय खास इत्तेफाक से और एक बहुत सुंदर ढंग से हुआ बताते हैं।
1: गौर करने की बात है, पहला जो नेशनल प्रोग्राम हुआ उसमें केसर भाई का
0: टेलीग्राम मिला,
1: आज ये रेडियो के बक्से में आज अच्छा गाना सुना,
0: बड़ी उपलब्धि है
1: जी,
0: कोई संदेह नहीं। तो आमिर खान साहब का भी आप पर असर हुआ, वो किस ढंग से आप हमेशा बताते हैं।
1: जब उनका गाना मुझको पसंद था, जिससे तांग लेते हैं या सरगम लेते हैं, ये सब मुझको बहुत पसंद था। उसके बाद हमारे सवाई गंधर्व संगीत उत्सव में भी बोला था,
0: सुना है हमने। आपके गायन में तानपुरे का महत्व बहुत है, तानपुरे की जोड़ी जब तक ठीक नहीं लगती तब तक आपका गाना शुरू ही नहीं होता।
1: हाँ बराबर है, वो तानपुरे में ये ताशीर है कि अच्छे तानपुरे मिल गए, 5 मिनट तक बजाते रहिए तो एटमोसफियर रेडी
0: पैदा हो जाता है।
1: ये आजकल की बात छोड़िए, लेकिन मैंने देखा जी तानपुरे मिला थे तो इतना ध्यान से मिला थे कि तानपुरे सुनते ही रहे।
0: ये तान क्रिया आपकी जो है ख्याल में
1: जी,
0: प्रस्तुति में
1: जी,
0: वो अपनी एक विशेष सुंदरता रखती है, और एक तान क्रिया जो आपकी है बहुत असर पैदा करती है।
1: ये तो सब जो कुछ में अच्छा है बुरा है वो सब गुरु की कृपा है। फिर उसमें गाना जब गाते हैं तो सिर्फ टाइम से नहीं गाना आता है, अपनी भी खुद की नजर चाहिए
0: चाहिए,
1: नजर इसका मतलब गायकी में सब ढंग चाहिए, रंगता के हिसाब से आपको जितना वैरायटी कर सकते हैं करते जाइए, फिर आपको उसमें गाता गाता विचार आते हैं उसका भी प्रयोग करें, लोगों को अच्छा लगता ही है। गाने का तत्व ही है कि जब तक कलाकार खुद खुश नहीं हो,
0: सब बात
1: आनंद उसमें नहीं आता तो लोगों को नहीं आएगा।
0: ये जो आपके गायन में भाव तत्व, आर्तता और एक भक्ति भाव हमेशा महसूस होता है, ये आपकी पैदाइशी स्वभाव है या भक्ति का असर?
1: ऐसा मैं सुना हूँ, बाल गंधर्व जी है वो, मैं तो नाटक नहीं दे सका, मैं बहुत छोटा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं
0: थे।
1: उनका जब वो भजन प्रोग्राम करते थे तो उसमें उनका गायकी के सब चीजें बहुत गौर से सुनता था, पर कैसे आते हैं, सुन पर कैसे आते हैं, ये शब्द ये कैसे फेंकते हैं, ऐसा
0: हाँ,
1: दो दो बार तीन तीन बार विठला करके संग पर आते थे। ये जो तस्वीर थी।
0: अच्छा पंडित जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गायन में प्रचलित या सिद्ध रागों पर आपका बल अधिक रहता है, और उसके पीछे आपका कुछ विचार तो जरूर होगा, उसके संबंध में कुछ बताइए। चोरी है, मालकंस है, दरबारी है, उस पर आपकी मुहर लग गई है, चोरी कल्याण आप ही गाए।
1: वो बात नहीं है, उसमें ये जो पुराने राग है उसमें गायकी आने के लिए ज्यादा रागों का क्रम नहीं चाहिए। सुना तो भी हमारे में मिलता नहीं, हम श्याम कुमार वाया पुरिया, हम रात में मालकों से दरबारी, उसमें जिंदगी गुजर जाती है। कलाकार को गाने के टाइम में क्या चाहिए, रंजकता,
0: फिर राग के भाव के मुताबिक आप अपनी आवाज को प्रकट करते हैं, आवाज का लगाव, जैसे कि जोगिया में आपका लगाव अलग है, दरबारी में अलग है, मियां मलार में अलग है,
1: सब अच्छे अच्छे बुजुर्गों को सुनने के बाद ऐसे विचार आते हैं, असल में गुरु कैसे गाते थे। मैं जब सीखने लगा तो सुनागंदर टफ आदमी थे, रिकॉर्डिंग के लिए रियाज करो, अब कल में फिले तो आज से शुरू, हर दिन पहले क्या गाना है क्या नहीं। ये जो रियाज करते थे वो सुनने को मिला मुझको,
2: बिल्कुल परंपरा का ही
1: लाभ है
2: वही उनके साथ आप रहे, उनका रियाज आपने सुना।
1: उस वक्त का हमने गुरु जी का गाना इतना सुना की एक ही राग अगर 10 बार गाए अलग अलग अनाथ में ताल में, ये ऐसा फिक्स ऐसा कुछ नहीं, स्वतंत्र विचार करने की शक्ति थी। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों का सुना हूँ मैं।
2: लेकिन रियाज के बारे में भी गुरुवर ने आपको कुछ अच्छा अच्छा एक दिखाया, जैसे कि आप बताते हैं कि सवेरे 4 बजे से आपका रियाज शुरू हो गया,
1: एक घंटा 2 घंटा हरिमंदिर सत्य, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद थोड़ा घर का काम करना, पानी लाना,
2: बहुत दूर फांसले से लाना पड़ा,
1: एक मील, तो फिर 10-11 बजे फिर शुरू, फिर शाम को। वो डेली नहीं सिखाते थे, ये उसमें तारीफ ही है, आज सिखाए तो 2-4 दिन छुट्टी, हमारे लिए नहीं।
2: तो आप तो रियाज करते ही रहेंगे,
1: बताए हैं वही रिवीजन
2: करना, दोहराई करते रहना।
1: और गाने का असली काम तो यही है, गायकी जब तक गले में नहीं बैठती तब तक कलाकार नहीं होता।
2: अब ये ठुमरी, तो ठुमरी तो आपने करीम खान साहब का भी असर है और गायकों का भी आप पर कुछ असर है, या ठुमरी के संबंध में आपने कुछ खास विचार किया है?
1: नहीं, विचार करने की क्या है, आपको ताजु होगा, लखनऊ रेडियो में है, मैं स्टाफ आर्टिस्ट था 1940 में, 35 रुपए मिलते थे और हफ्ते में 2 दिन गाना 15-15 मिनट, लेकिन उस वक्त वहाँ गाने के लिए सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन भाई और मोहम्मद अख्तर, ये सब टॉप फॉर्म है। बिस्मिल्लाह को कसरत करने का भी शौक है, मैं और बिस्मिल्लाह दोनों मिलके रेड़ो के बगीचे में कसरत करते थे। तो आज सुनने के लिए, ठुमरी सुनने के लिए मैं था।
2: पंडित जी, आपको इतनी शोहरत मिली है, मान मान्यता मिली है, लेकिन आप सादगी की साकार मूर्ति हैं। आपकी वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका आहार भी, सब कुछ में सादगी आपने अपनाई है, तो इसके पीछे आपके स्वभाव की एक विशेषता हमें महसूस होती है। क्या ये शुरू से ही आप ऐसे ही हैं?
1: मैं शुरू से ही ऐसे हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आप जानते हैं हमारे संस्कृत के हवालों में और यही से संस्कृत, हमारे घर में सब लोग आते थे, फिंगर देते हैं, सब आते थे। बचपन से मैं देखता था इनका रहन सहन कैसा है, ये देखे देखे हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि हम गाने के लिए अलग ड्रेस करें, जो कुछ है गला है।
2: गायकों के लिए आहार के संबंध में कुछ परहेज होता है, ये पसंद है वो, उसके गले पे असर होगा, ये हम नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये भी आपके लिए नहीं है?
1: नहीं, मैं खाता हूँ, सब खाता हूँ, उसके लिए अपना जनरल हेल्थ जो है वो अच्छी थी, इसके लिए मैंने कसरत भी किया, तो स्विमिंग उसी वजह से आज जिंदा हूँ।
2: इस ताकत का एक और भी एक उदाहरण मिलता है कि आप मोटर ड्राइविंग में आपने रस लिया, लेकिन मोटर ड्राइविंग तो आपने सीखा, मोटर मैकेनिक भी सीखा।
1: वो तो इधर गैरेज में जाके बैठता था, ये लोग क्या करते हैं इंजन खोले वगैरह, लेकिन मालूम नहीं होता।
2: ऐसा गायक तो हमने देखा ना कि खुद मोटर चलाते हुए गए, 500-600 मील गए, फिर महफिल के मंच पर हाजिर हो गए।
1: यहाँ से मैं कलकत्ता गया, मद्रास गया, अपना जलंधर गया,
2: खुद ड्राइविंग करते हुए,
1: ड्राइविंग करते। हमारा भारत देश इतना अच्छा है, आप जब तक ऐसे नहीं जाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
2: फिर आपके इस गान प्रस्तुति में ख्याल तो आपने पक्का बनाया ही, उसके साथ ही साथ भक्ति संगीत, जिसको हम मराठी में संतवाणी के नाम से आपका बहुत ही मशहूर हुआ है प्रोग्राम, तो संतवाणी का आरंभ आपके गुरुवर की प्रेरणा से हुआ?
1: हाँ, देखिए हमारे गुरु जी बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद डॉक्टरों को ने बोला प्रोग्राम मत करो, तो मैंने पूछा घर में अगर भजन करो तो चलेगा? हाँ ठीक है, घंटा उस वक्त वो जो गाते थे हमको, जो पुरंदरास भजन याद थे, अब हिंदी का भी जो बजे हरिको सुधा, इसका ट्यूनिंग जो है हमारे गुरु जी ने किया है, ऐसा करके शुरू हुआ।
2: विदेशों में भी वहाँ पे संतवाणी पर लोग रिझते हैं
1: बहुत। हाँ, वो पूजा हुआ तो बोलते वो विठल का गाना सुनो, उनको समझ में नहीं आता।
2: हाँ, सच है,
1: लेकिन वो विठल का गाना सुनो। असल में क्या है, स्वर सच्चा है तो सब सच।
2: अब आपके गायन में तुरंत असर पैदा करने का जो गुण है, क्या आपने नाटकों में भूमिकाएं की थी, पार्ट अदा किए थे?
1: ये हमारे गुरुजी की वजह से, क्योंकि उनके खुद की गंगाधर जैसी कंपनी थी।
2: महादेशी नाटक था।
1: हाँ, वो है, हमारे दरा बिंद्रे थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण राव बिंद्रे, उन्होंने लिखा था वो नाटक के अंतर परिवर्तन करके, हमारे मनोहर नारायण राव करके थे, और उसमें हमारी विशेष भी काम की थी, मैं हीरो और वो हीरोइन।
2: लगभग 60 वर्षों से अपना गाना सुनाते आ रहे हैं, अब हर कदम पर आप आगे ही बढ़ रहे हैं और आज भी आप अपनी महफिलें जारी हैं। परसों परसों आप कहीं और भी दूर दूर जाके आए हैं, ऐसा हमने सुना।
1: अमृतसर गया था, डॉक्टर लाला मुरली कृष्णा है ना
2: जी। हाँ, मालूम है।
1: उसके साथ हम जुगलबंदी करते।
2: अच्छा,
1: उसके लिए क्या था, हमारी पुट्टी आया था गुरु पूर्णिमा के दिन ही प्रोग्राम।
2: फिर आकाशवाणी के तो आप वर्षों से कलाकार रहे हैं।
1: 1992 में तो 41 से गा रहा हूँ, उस वक्त ये ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं था।
2: रिकॉर्डिंग्स जो हुए हैं आपके बहुत ज्यादा हुए हैं, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क तो आपकी बहुत सी निकली है
1: जी,
2: कैसेट भी निकली है, ध्वनि मुद्रिकाएं निकली है, तो चारों तरफ से आपको ये जो सफलता मिली है, जो शोहरत मिली है, इसके लिए आपको जितनी बधाई दी जाए और आपके साथ हम इस दुनिया में रहते हैं इसके लिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए।
3: सालों में आप सुन रहे थे मारूफ क्लासिकल गुलूकार पंडित भीमसेन जोशी के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी डॉक्टर सी रंग सर्वराम जी ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे में।

तुम्हें मिली तन से कोई आगे न पीछे तुम कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में भागी सी मिली तन से कोई आगे

मिली सजन भी से कोई आगे न पीछे, तुम कहो ये कोई बात है।

नगमा के बाद में आप सुन रहे थे बनारसी बाबू फिल्म का नगमा, और सावली जब सिंह, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्रोग्राम की पेशकश फिल्म है मेरा गांव मेरा देश।

अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी।

अपनी अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी।

जो कुछ है सब

अपनी जोड़ी

पुरानी फिल्म का अगर आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में नगमा गाते हैं आनंद रफी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने ये सुनिए कुमार सानू की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है आर डी बर्मन ने, फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

0: फिल्म लगना सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मेरे महबूब तुझे सलाम।

Yeah.

नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सुबह दी शुरुआत च सब तो पहला समाचार फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माहिती।

Yeah, yeah.

लादा है मेरे दादू पीते नाल न बोले लादा है मेरे दादू पीते नाल न बोले एक उतारी रात तुझे जाबल पाचा छोड़े गुलाय के अक्के छुड़े ते मर के पीते माया के अक्के छुड़े ते मर के पीते यार हो बेटा करी पहुंची हर दम ताबे दारी दुलाई के लिए तुझे मैं के लिए माया के लिए

0: जो वाजी ना निकले, चोर चोर के नू गले जो वाज ता आवे तो वाजी ना निकले। उठे ता पता लगा लाल दिया दे कर दी बत्ती बेसी उल्दी, तो मैं परछावे तो भी डरी जावा।
1: बिल्कुल ठीक है नी हीला, पर हुन मैं कमला नू ये सलाह देंगी कि तुसी ये दो जी कलम कले एक गद्दी कुत्ता रख लो। गद्दी कुत्ता बड़ा जालम है, मजा ले किसी अपने नू घर वड़न देवे। सारी रात दा पैरा ते खाओ दो सुके टुकर।
0: हाँ पैना इन्हें कह गद्दी पिल्ला ले आओ, कहते ने कुत्ता कतूरा ही पाया जाए तो टिकता है।
1: ये भी तेरी गल ठीक है, मैं जदो टैगर लिया सी इन्हें भी चिड़ी जिन्ना बोर सी, ते हुण वेख लै सारी रात भौंकदा मजा ला साडे घर दे नेड़े तेड़े भी कोई फड़ जाए।
2: कमला
1: लै बेबे होर गल दस गई है कि तुहाडे राती चोरां ने खरूत भी बड़ा पाया।
0: ना नी खरूद तो कोई नहीं पाया, बस बीड़िया का अद्धा बंडल माच से छड गए।
2: चलो शुकर है कोई नुकसान तो नहीं ना होया।
0: ना पैना बचा ही हो गया।
1: हाथ नहीं पिया उसका कमला, हाथ नहीं पिया। मेरी गल मनो हुण इथे आओ जरूर। तुसी इंज करो ए जिहड़ी तुहाडी बाउंडरी वाले ना इस नू साढ़े चार इंच की थां कराओ 9 इंच चौड़ी, ते उत्ते लवा लो कच। शीशे दिया कतरा लगिया होनगियां तो कोई इधर अख पुट के नहीं वेख सकेगा। पतला जिहा पड़दा किस काम दा, बंदा मुक्की मारे ते टह जांदा है।
0: हुण तां तेरी गल ठीक है भैण, पर डुब्बी तो तां जो साह ना आया। इह कमरा छत्तण दा पंगा लै बैठे आ, अजकल तां राजा मिस्त्रियां दी दिहाड़ी ही नहीं माण। पैसे होणगे तां कच भी लाउणा ही पवेगा।
1: नी भैण औखी हो ते भावें हो सौखी, पहला काम इहो ही करो। कहिंदे ने वी अपना घर संभालीए ते चोर किसे नूं ना आखीए। कमला तेरे नाल की बीतिया? कमला ओ बेबे दस गई मैनू, ते कहिंदी सारी रात तू सुते नहीं, ना कुछ खादा ना पीता, कहिंदे ने चोर खड़खड़ करदे रहे तेरे घर सारी रात।
0: की भैणे मैं तो सवेरे वेख्या ए बीड़ियां दा बंडल ते माचिस।
1: नी ए कोई चोर सवेरे सवेरे थोड़ा रख के चला गया है, सारी रात रब जाने किन्ने चोर बिड़का लैंदे रहे होणगे। की कुछ किथे पिया वे ए सब ताड़ दे रहे होणगे।
0: कमला मेरी गल मन, इन्हां सारिआं दरवाजिआं नूं ना बिजली दी तार ला के सौ, जिने हथ लाया ओही मोया।
1: पर केसरो किसे वेले कोई अपने घर दा ही जी आ जांदा है, जां भुल भुलेखे अपने हथ लग जांदा है, इह काम नहीं खतरनाक। हां इह हो सकदा है कि पप्पी दे पापे नूं कह के बिजली वाली घंटी लवा लो। घंटी वजे बुरा खोलिया ते झट पता लग जांदा कि दरवाजे नाल कोई है। पई सुखी बुरा ना मनी, पप्पी दा पापा धीआ नी तेरा घर वाला, चार गुणा ज्यादा ही पैसे झाड़दा। असी ते
3: नी रहण दे,
1: असी कोई चोर दे चार गुणा ज्यादा पैसे लाइए। नाले अगले दा भला करो ते नाले तेरे वर्गी दीआं गल्लां सुणो।
3: नी तेरे वर्गियां तो की मतलब
1: नी, मैं दो स्विच लवाए सी तेरे घर वाले कोलो, 20 रुपए लै गया। गुआंड मथा ना कुछ कहन जोगा ना कतरन जोगा।
3: तौबा तौबा, नी पक्की दे पापे दी पूरी दिहाड़ी लगी ते उन्ने जे 20 रुपए लिया भी ले ते केड़ा जुल्म कर दिता।
0: छड्डो परा कुड़ियो, तुसी कमला दे घर आके क्यों भला लड़न लग गयो है? उस बेचारी दा तो ख्याल करो, राती ओदे घर चोर आए ते तुसी आपस च तू तू मैं करन लग गई।
3: मैं तां इहनूं चंगी तरह जाननी आ केसरो, मैं की सारा महला ही जानदा कपत्ती किसे थां दी, मेरी नहीं आदत किसे नाल गल करन दी।
1: मैं केड़ी गल कीती है? मैं तो सुभाव की तौर ते कहा है कि घंटी लवानी महंगी पेगी, नाले इस तरह कोई झूर फड़े जांदे ने
3: ते होर किस तरह फड़े जांदे ने।
4: हम दसते हैं, जब हम इंग्लैंड में थे तो उठे होता बर्गलर अलार्म, कोई कमरे में एंटर होया मेरा मतलब अंदर आया तो बर्गलर अलार्म बजना शुरू।
1: पर भरा जी इंग्लैंड नहीं है, मैं तो इस अलार्म बारे कदी नहीं सुनिया।
4: भैन कमला जी सैंस किथे की किथे चली गई है, वेरी एडवांस वेरी एडवांस। जब मैं लंदन में था तो मेरी मालिक मकान ने अंडरग्राउंड तारें खींच के बर्गलर अलार्म थाने में लगाया आया था। अंदर कोई चोर डाकू अंदर रूम में आया, मेरा मतलब एंटर होया, उधर बर्गलर अलार्म बचा, 3 मिनट में पुलिस दी गड्डी बाहर, वेरी क्विक।
1: लो एडे तरद कर दे फिरो। भरा जी
2: ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੋਫੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ। ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਬਗਲਰ ਅਲਾਰਮ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ?
4: ਬਗਲਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਬਗਲਰ ਅਲਾਰਮ, ਬਗਲਰ ਅਲਾਰਮ ਭੈਣ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਹਮਾਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਇਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਹੱਥੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਲੱਗੀ ਉਸਕੋ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਡੇਂਜਰ, ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ।
2: ਕਮਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਅਰਨ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਰਨ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀਖ ਫਸਾ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ 100 ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।
1: ਮਹਿੰਦਰੋ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਮਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਗਵਾਂਢ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਨਾਲ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਸਮੇਤ ਪੇਚ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਚੀ ਹੈ
4: ਬੀਬੀ ਜੀ।
1: ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
4: ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਯਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ।
1: ਬਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ?
4: ਮਾਚਿਸ ਪੜੇ ਰਹੇ।
1: ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੀੜੀ ਤੋਂ ਮਾਚਿਸ?
4: ਜੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਇਹੀ ਰਾਤ ਭਰ ਰੱਖੇ ਹੈ।
1: ਤੇਰਾ ਮੋਇਆ ਮਰ ਜਾਣਿਆ,

ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇਹ ਗੀਤ।

ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਸਾਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚ ਇਹ ਗੀਤ।

Yeah.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ

I'm gonna make you mine.

Yeah.

0: हां जी तेजा सिंह जी लंघ आइए।
1: वाह जी वाह, वाह जी वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लंघे आओ शिंगारा सिंह जी, आ जाओ
0: जी, आ गए जी, आ गए जी। जय हिंद जी, तेजा सिंह जी, जय हिंद,
1: जय हिंद जी। शिंगारा सिंह जी, होर सुनाओ की हाल आ?
0: हाल चाल तगड़े ने, वाल ने, तुहां सुनाओ?
1: बहुत वधिया आ। अच्छा देखो, गल सुनो, अगे ना पुराने समय च की हुंदा सी
0: जी,
1: भई अपनियां बीबियां खास करके ना कठियां होके बह जाना,
0: ਅੱਖੇ
1: ਕੱਤਣੇ ਹੈ, ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਪੱਖੀਆਂ, ਸਰਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਦੀ।

0: सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए, हमारा जैसे कि मौसम बदलता है, उसी हिसाब से हम अपना खान पान भी बदलते हैं, और बरसात के मौसम में तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये साथ साथ बात करें अगर वायु प्रदूषण की, तो जिस तरीके से वायु प्रदूषण का हमारे पर्यावरण पे गलत असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से हमारे खेतों में, हमारी खेत की मिट्टी में और हमारी फसलों पर, हमारे पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक खास बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव। और इसमें बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ हवा केवल स्वास्थ्य के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि हमारी कृषि के लिए भी आवश्यक है, हमारे खान पान के लिए भी आवश्यक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर स्वच्छ हवा होगा तो कृषि भी अच्छी होगी, और जब कृषि अच्छी होगी तो खाद्यान्न पर भी उसका अच्छा असर होगा। और खाद्यान्न हमारे लिए बेहद जरूरी है, और उसका भी स्वस्थ होना यानी कि सेहत के लिए भी स्वस्थ होना सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता उसमें कुछ गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से कृषि पर प्रभाव पड़ने लगा है। और जब कृषि पर प्रभाव पड़ता है तो किसानों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। बातचीत का जो विषय है वो है वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक को, और आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में पर्यावरण विज्ञान संभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर संदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कृषि की अगर बात करें, कृषि को लेकर के, कृषि के संदर्भ में अगर हम बात करें, वायु की गुणवत्ता में गिरावट का क्या मतलब है, इसे आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे?
3: वायु में की गुणवत्ता में गिरावट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो हमारी वायु की जो गुणवत्ता वो खराब हो जाती है, और उसके खराब होने के कई रीजन होते हैं, जिनमें जो पहला रीजन है कि जो वायु का जो हमारा उसका गठन होता है, संगठन, उसमें जो गैसेज होती हैं, उसमें कुछ गैसेज जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेज होती हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं, या हमारी जो वायु होती है उसके अंदर जो कणीय पदार्थ हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिनको बोला जाता है, वो आ जाते हैं। तो इन सब की वजह से जो वायु होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर हम कृषि की बात करते हैं तो फसलों के लिए, एनिमल्स के लिए, और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसके लिए वो हानिकारक हो जाती है।
2: जी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक कृषि के लिए बहुत बड़ी गंभीर एक चुनौती भी है।
3: हाँ, आप मान सकते हैं, एक हमारे सभी तंत्र के लिए हानिकारक है, जिसमें कृषि भी एक इसका भाग है।
2: जी, तो वायु प्रदूषण का फसलों पर किस प्रकार असर होता है, हमें किस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं?
3: वायु प्रदूषण, अगर हम खेती की बात करते हैं तो खेती में किसी भी फसल पे अगर हम लक्षण देखते हैं तो लक्षण कई प्रकार से लक्षण आते हैं, उसमें केवल वायु प्रदूषण का ही रोल नहीं होता। जैसे कई बार हमारे खेत में कुछ जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है, कई बार हमारे खेत में है वो कुछ बाहरी जो इंसेक्ट वगैरह है वो लग जाने से भी फसल में कई प्रकार के लक्षण आते हैं। इसी के साथ में जो वायु प्रदूषण जब अधिक होता है तो उसकी वजह से भी फसलों में कई प्रकार के जो है सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब की पहचान करना, जनरली एक किसान है वो इनकी पहचान नहीं कर सकता। इसके लिए जो लोग या जो भी रिसर्चर हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो लंबे टाइम तक काम करते हैं, वो इस चीजों को इजीली पहचान सकते हैं और अपने जो संबंधित किसान होते हैं उनको बता सकते हैं।
2: जी,
3: तो जैसे इसमें मुख्य अगर हम बात करें तो इनमें भी वही लक्षण होते हैं जो बाकी पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, इसके साथ साथ में पत्तियों पे भूरे जो निशान हो जाते हैं, प्लांट की पत्तियां छोटी हो जाती हैं साइज में, और प्लांट है वो जल्दी, मतलब उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो छोटा हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाते हैं।
2: जी, तो इसका असर मिट्टी पर भी नेचुरली देखा जाए तो असर होता ही है।
3: हाँ, मिट्टी पे जो हमारे सूक्ष्म जीव है उन पे भी इसका असर होता है वायु प्रदूषण का। साथ में अगर हमारे वायु में अगर अधिक मात्रा में ओजोन है जो काफी टॉक्सिक होता है हमारे फसलों के लिए, वो जितनी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है सोयल में उनको भी वो काफी नेगेटिवली या बहुत मतलब हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ अगर हमारे वायुमंडल में जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से जो रेन आती है वो उसकी पीएच में चेंज आता था, जिसको हम जनरली एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो हमारे जो मिट्टी की पीएच होता है, लेवल होता है, उसको चेंज कर देता है, जिससे भी है वो सोयल के अंदर काफी चेंजेस आते हैं।
2: सोयल के अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो नेचुरली पौधों की पत्तियों में भी, उनके फलों में भी असर होता है।
3: हाँ जी, जरूर
2: जी। और कई बार देखा जाता है कि कई बार धूल भरी आंधी, जैसे कि राजस्थान के इलाकों में और खासकर गर्मियों में देखा जाता है कि धूल भरी आंधी चलती है, तो वो सब भी पत्तों पर जम जाते हैं, तो उसका असर भी पौधों पर होता है।
3: हाँ,
2: वो किस प्रकार असर करता है?
3: अगर आप धूल भरी आंधी है, या आप कोई खेत देखते हो जो जिसके पास से रोड निकल रही होती है, या आप कोई खेत देखते हो कि जिसके पास में ईंट बनाने का कोई भट्टा वगैरह है, तो वहां पे देखो कि जितनी फसल होती है उनकी जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर एक मिट्टी की एक लेयर चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। आप अंगुली से अगर उठाओ तो मोटी परत चढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो इससे वो फोटोसिंथेसिस है और उनमें जो गैसेज का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा, वो अफेक्ट होता है। जब फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अफेक्ट होती है तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाते हैं ढंग से, जिसकी वजह से है वो पौधों में कई चीजों की कमी आ जाती है, जैसे उनके एंजाइम्स होते हैं पौधे में वो अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट विटामिन प्रोटीन है उन सबकी क्वालिटी खराब हो जाती है।
2: जी डॉक्टर संदीप जी, अभी आपने शुरुआत में कुछ गैसेस की बात की थी और उसमें एक ओजोन गैस भी है, तो ओजोन गैस का हमारी कृषि पर किस प्रकार का प्रभाव होता है?
3: अगर हम साइंस की बात करते हैं तो ओजोन है वो एक सेकेंड कैटेगरी का पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी, जिसको द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। मतलब इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है हमारे एनवायरमेंट में, अगर देखा जाए तो कोई भी डायरेक्ट, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका सीधा सोर्स होता है
2: जी।
3: लेकिन ओजोन का कोई सीधा सोर्स नहीं होता है। जब हमारे जितनी भी गैसेज वातावरण में जाती है तो ये गैसेज मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन को एटमॉस्फेयर में बनाती हैं
2: जी।
3: तो जैसे हम कुछ गैसेज की बात करें, जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब रिएक्शन करके हैं वो ओजोन को बनाते हैं। और ओजोन जब तक सनलाइट होती है तब तक ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन है वो, अगर ओजोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये क्या, ओजोन से हमारे पौधों में क्या होता है कि जो बोलते हैं फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो किसी भी पादप की या पौधे की सेल में जब फ्री रेडिकल बनते हैं तो वो पौधा जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब तो उसमें पैदावार नहीं हो पाती है
2: जी।
3: पौधे से पैदावार नहीं हो जाती है, पैदावार नहीं होती है, साथ में उसकी जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही पुअर होती है, तो इससे हमारे खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है। और खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ता है तो आप उसको बोल सकते हो कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, देश की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है
2: जी। डॉक्टर संदीप जी, अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे एसिड रेन के विषय में, आपने जानकारी दी, तो ये एसिड रेन वास्तव में किस प्रकार हमारे पौधों को प्रभावित करता है और मिट्टी को प्रभावित करता है, और जब मिट्टी को प्रभावित करता है तो खाद्यान्न पर भी असर होता है, ये किस प्रकार होता है?
3: अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः है जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जो मेनली थर्मल पावर प्लांट वगैरह से जिनका इमिशन होता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जो जितना भी ये डीजल पेट्रोल इनके बर्निंग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये हमारे वातावरण में जाते हैं, वातावरण में विद्यमान जो भी वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वो बारिश के साथ हमारी मिट्टी पे या मृदा पे या पशुओं पे जो भी है, जिस भी सतह पे आके जहां जहां बारिश गिरती है, तो इससे बारिश की जो पीएच होती है वो जनरली 5.6 से कम हो जाती है, उससे कम होती है किसी भी बारिश की, अगर वो पीएच 5.6 से कम होती है तो उसको अम्लीय वर्षा हम मानते हैं। अब ये है वो अम्लीय का नाम ही बता रहा है कि हमारी जो पीएच है वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है बारिश
2: जी।
3: जब बारिश एसिडिक हो जाती है तो हमारी सोयल में, अगर पहले हम सोयल की बात करते हैं, वैसे तो अम्लीय वर्षा जहां गिरती है हर चीज को प्रभावित करती है, चाहे आप हमारी बिल्डिंग पे भी गिरती है तो भी प्रभाव करती है। उसका एक एग्जाम्पल ताजमहल है कि ताजमहल का जो मार्बल है वो खराब हो रहा है, वो अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, हमारे जो जानवर वगैरह है या जो मानव स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य को डायरेक्ट प्रभावित करती है, मृदा के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, हमारी मृदा की जो पीएच है वो चेंज हो जाती है, जिससे जो माइक्रोब्स हैं उनकी पॉपुलेशन है वो घट जाती है, चेंज हो जाती है। साथ ही अगर पीएच चेंज होती है तो इससे जो हमारी मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपलब्धता कम हो जाती है
2: जी।
3: और जब सोयल की जो पीएच होती है तो इसकी वजह से कई बार टॉक्सिक मेटल है उनकी उपलब्धता ज्यादा हो जाती है
2: जी जी।
3: तो इसलिए मृदा के ऊपर ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों पे भी डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट होता है, इसकी जो पत्तियां वगैरह हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई विजिबल सिम्टम्स आता है, जनरली बारिश में जो हमारी पहली बारिश होती है वो बारिश की सीजन में, उसको जनरली हम बोलते हैं कि इसमें इसकी पीएच थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर रेगुलर बारिश आ रही है तो उसकी पीएच पे कोई ज्यादा खास चेंज नहीं होता है, वो अमलीय वर्षा जनरली नहीं कंसीडर की जाती है। प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा वगैरह से क्या होता है कि इंटर करके हमारी जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के उनको ये प्रभावित करता है। कुल मिला के जो हमारे प्लांट की उत्पादकता है वो डायरेक्टली इससे प्रभावित होती है।
2: जी डॉक्टर संदीप जी, अभी आपने ये अमलीय वर्षा और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इन सब के विषय में चर्चा की है, तो क्या ये अलग अलग मौसम में अलग अलग इसकी मात्रा होती है, अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है फसलों पे?
3: प्रभाव तो एक ही जैसा होता है, किसी भी मौसम में उसका प्रभाव एक ही होता है, फसल के हिसाब से इसका प्रभाव होता है किस टाइप की फसल है। दूसरी है कि अगर हम जितने भी जो वायु प्रदूषक होते हैं
2: जी,
3: अगर आप इनकी जो सांद्रता होती है हमारे वातावरण में वो हर सेकंड चेंज होती रहती है
2: जी हाँ।
3: अगर आप एक ही जगह इनको मापोगे तो इनको बार बार इनकी अलग अलग रीडिंग आएगी, क्योंकि हवा चलती रहती है तो इनका जो भी कंसेंट्रेशन होती है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। लेकिन इनका अल्टीमेट जो इफेक्ट होता है वो लगभग एक जैसा होता है। जैसे ये अल्टीमेटली प्लांट पे कैसे भी इफेक्ट डाले लेकिन उसकी उत्पादकता वो कम कर देते हैं, उनका जो जीवन चक्र वो छोटा कर देते हैं, उनमें जो क्वालिटी होती है वो खत्म कर देते हैं। क्वालिटी का मतलब है कि जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाता है या कोई पोषक तत्व है वो कम हो जाते हैं। अगर ओजोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो प्लांट के अंदर से विटामिन सी है, अगर हम आंवला का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आंवला के आसपास ज्यादा है तो विटामिन सी की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट के काम करता है और ये फ्री रेडिकल बनाते हैं तो कंजप्शन हो जाता है उसका।
2: जी डॉक्टर संदीप जी, प्रदूषण का जो असर होता है

0: मिट्टी को लेकर के भी कि मिट्टी भी उसी के अनुसार भी प्रभावित होते हैं?
1: नहीं, मिट्टी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जनरली अम्लीय वर्षा के आधार के ऊपर। मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से क्लासिफाइड होती है
0: जी।
1: कुछ मिट्टी साउथर्न इंडिया की है या ईस्टर्न पार्ट की है, ऑलरेडी उनकी पीएच कमी है।
0: डॉक्टर संदीप जी, वैसे वायु प्रदूषण यानी कि वायु की जो गुणवत्ता देखा गया है समय समय पर बदलता रहता है और उसमें गिरावट होती रहती है, लेकिन अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद इस दिशा में किस प्रकार का काम कर रही है? क्या कोई ऐसे बीज की किस्म या पौधे ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि किसानों को कुछ सहायता हो सके?
1: हाँ जरूर, इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी काफी काम कर रहे हैं। जो आजकल जो जलवायु परिवर्तन की वजह से भी जो चेंजेज आ रहे हैं उनके लिए भी है, वो काफी वेराइटीज पे काम चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में देखोगे तो कई वैज्ञानिक है जो वेराइटीज पे काम कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास जो वेराइटीज है उनमें कौन सी वेराइटी है वो जो सस्टेन कर सकती है, प्रेजेंट कंडीशन में कौन सी ज्यादा है, तो हम किसानों को ये भी बता सकते हैं कि आप इस एरिया में ये वेराइटी उगाओ तो आपके लिए वो ज्यादा पैदावार करेगी या पैदावार इससे प्रभावित नहीं होगी। तो इसके दिशा में काफी काम चल रहा है और आने वाले कुछ समय में इस प्रकार की वेराइटियां देखने को मिल जाएगी।
0: तो जो किसान है जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जब इस प्रकार की गुणवत्ता की बात होती है, वायु गुणवत्ता में गिरावट की बात होती है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से बचाव करें?
1: इसके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके लिए किसानों को जैसे क्या होता है कि हमारे मिट्टी पानी उनका तो हम पता भी लग जाता है चीजों में क्या चल रहा है, लेकिन जो वायु प्रदूषण की वजह से है जनरली किसानों को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उसका भी हम कई बार ये सोचते हैं कि मिट्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो क्या रहा है। तो इसके लिए है कि जो भी किसान है के रिगार्डिंग कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि वो इन चीजों के बारे में जान पाए। किसानों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, समय समय पर उनको अवेयर, कुल मिला के है कि हम किसानों को अवेयर करके इसके बारे में बता सकते हैं और उसी के बाद में किसान वो कुछ अपने लेवल पे कुछ काम के उपाय कर सकते हैं। जैसे कोई वेरायटी का कोई जो अच्छी वेरायटी है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या उस एरिया ओजोन का पोल्यूशन ज्यादा है तो उस एरिया में हम वो फसलें ले सकते हैं जहाँ पे ओजोन का इफेक्ट उन पर नहीं होता है, तो ऐसे करके वो इनसे बचाव कर सकते हैं।
0: यानी हम ये कह सकते हैं कि किसानों को इसके विषय में अलर्ट रहना होगा और इसकी जानकारी
1: लेनी
0: और जो कृषि वैज्ञानिक है उनसे लगातार संपर्क में रहें तो काफी हद तक जानकारियां मिल सकती है और कृषि की जो फसलें हैं उन पे काफी हद तक एक प्रकार से रिसर्च किया जा सकता है और उनको ध्यान में रख करके आगे की जो प्लानिंग है कृषि करने की उसी अनुसार चल सकते। तो अभी देखा जा रहा है कि चारों तरफ क्लाइमेट चेंज की बात होती है, जब वायु प्रदूषण की बात होती है, गुणवत्ता में बात होती है, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहें?
1: वैसे तो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण दोनों ही अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें लगभग हम सारी गैसेज जो एटमॉस्फेयर में होती है उनको मान के चलते हैं कि इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी गैसेज जैसे मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुए, इन सब गैसेज को हम जनरली ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, वो हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन जो बाकी गैसेज हैं वो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो एयर की जो गुणवत्ता होता है उसको घटाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जितनी भी जो गैसेज होती हैं
0: जी,
1: चाहे जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें, इनका प्रभाव हमारी खेती पे वो डायरेक्ट होता है। चाहे हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें, ये हमारी फसलों की अल्टीमेटली हमारी जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करते हैं।
0: एक दूसरे से लेकिन जुड़े तो हुए हैं,
1: ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे लगभग हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने वायु प्रदूषक हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार है वो वायु प्रदूषक हो सकते हैं।
0: डॉक्टर संदीप जी, हमारे जो श्रोता हैं, जो किसान भाई हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आज के विषय को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों को ये एक नया सब्जेक्ट है उनके लिए, वो इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखाएं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें ताकि वो एक स्वस्थ पैदावार कर सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं, और अधिक उत्पादन लेंगे तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर और मजबूत होगी,
0: यानी कि आय का स्रोत भी बढ़ सकता है। हाँ। और ज्यादा आय हो सकती है,
1: ज्यादा इनकम
0: हो सकती है। जी डॉक्टर संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और जो वायु की गुणवत्ता में गिरावट और कृषि पर जो प्रभाव है इसके विषय में आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत जिसका विषय था वायु गुणवत्ता में गिरावट का कृषि पर प्रभाव, और इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संदीप कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। और देखिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं वो कृषि विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके उनके साथ संपर्क में रहकर जानकारी लेकर सही वैरायटियों का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के।

हिसाब से, और फिर उससे वो जिससे ऐसी वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जिसका प्रभाव अधिक क्लाइमेट चेंज होते हुए भी अधिक प्रभावित ना हो और अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई ले सकें। और अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मनोज कुमार की आवाज़ में ये सावन गीत।

0: भाइयों, अभी आप सुन रहे थे सावन गीत और कलाकार थे मनोज कुमार कीरतपुर। तो भाई बात हम कर रहे सावन की, बारिश की और साथ साथ खूब मजे से झूलों में झूलने की और सखी सहेलियों की। तो बात हम खाने पीने की भी करेंगे कि खाना पीना भी इस मौसम में आपको बहुत ही सोच समझ के खाना है, ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने झूमने और नाचने गाने में और बारिश का मजा लेने में आप अपनी सेहत को भूल जाएं, जो कि वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज्यादा कभी न कभी खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप भीग जाएं तो ठंडी का जरा सा भी एहसास हो और लगे आपको कि खांसी जुकाम होना हो सकता है, तो आपको हल्दी दूध का गरम गरम दूध पीना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है दूध में और तुलसी का सेवन कर सकते हैं। उसमें तुलसी, थोड़ा सा तुलसी भी डाल सकते हैं। अगर चाय पी रहे हैं तो तुलसी और अदरक मिलाकर ऐसे कुछ घर की जो ये नुस्खे होते हैं इनको अपनाकर आप अपने आप को सही रख सकते हैं। इस मौसम का भी मजा भी ले सकते हैं और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल लॉरी, इसके साथ साथ वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा

खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें। दलहनी फसलों तथा सब्जी नर्सरियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें हमारे किसान भाई, क्योंकि अधिक जल भराव से जो हमारे सब्जियां होती हैं अक्सर देखा जाता है कि उनके खराब होने की भी संभावना रहती है। तो बरसात के मौसम में जहां एक तरफ कीट पतंगों का भी अधिक खतरा रहता है, तो निगरानी करते रहें अपनी फसल की और उचित देखभाल के जरिए अपनी फसल को आप बचा कर रखें। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज में ये उपदेश।
1: और इसके साथ ही कुछ जानकारी जो कि इस मौसम में आपको खास ध्यान रखनी है। इस मौसम में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की भी बुआई आप कर सकते हैं, जल निकासी का प्रबंधन भी कर सकते हैं, खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी किया जा सकता है। सफेद मक्खी और चूसक कीटों का नियमित रूप से निगरानी करना बहुत जरूरी है। टमाटर, मिर्च, बैंगन की पौध अगर तैयार है तो मेड़ बनाकर उसकी रुपाई भी करें,
0: क्योंकि मेड़ बनाकर रुपाई करना इसलिए जरूरी है कि बरसात का मौसम है, अगर आप मेड़ बनाएंगे तो उससे आपकी जो पौध हैं वो सुरक्षित रहेंगी और सड़ल और गलन की समस्या जो अक्सर देखी जाती है बरसात के मौसम में, तो ऐसे में जरूरी है कि मेड़ पर या फिर बेड बना के अगर हम अपने पौधों को लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छी बढ़वार भी ले पाएंगे और उससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो ये बरसात का मौसम है जिसमें आपको जल निकासी के साथ साथ जो मक्खी हैं और चूसक कीट हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी फसल को बेहतर बनाए रहें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक है शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कव्वाली के कार्यक्रम में जफार हसन खान की आवाज में ये खूबसूरत सी कव्वाली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़े में शामिल किया। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, इनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
4: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
2: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: समारोह में 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। अत्यधिक सुविधा से संस्थान की AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतः विषयक अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के विभिन्न बाजार और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई, बेहतर शहरी नियोजन और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। श्री द्विवेदी ने पदभार संभालने के बाद परिषद के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने नागरिक सुविधाओं, प्रभावी सेवा वितरण और नागरिक केंद्रित प्रशासन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। श्री द्विवेदी ने केशव चंद्रा का स्थान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए। सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान निरसन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा के आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र से पहले दिन विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत और आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार दिल्ली की लाखों महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है।
0: ये दिल्ली की बहनों का विश्वास है और इस विश्वास पे खरा उतरना हमारा धर्म है। हमने 2500 रुपए की योजना लागू की है और बहनों को उनका सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले, ये हमारा काम।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बहनें खुश हैं और उनकी सरकार ने महिलाओं से किया अपना वादा पूरा किया है।
0: 2015 तक की डेट थी जिसमें कि किसी झुग्गी को सरकार मकान दे सके, जिसे हमने 1 जनवरी 2025 किया है और इसके अंतर्गत आने के बाद में दिल्ली की 99% झुग्गियों को मकान मिल जाएगा। कोई भी झुग्गी मुझे लगता है छूटेगी नहीं। एक विस्तृत योजना जिसका लाभ सब तक पहुंचे, ये काम करना कोई आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के सानिध्य में ये योजना पूरी हो पा रही है।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बहनों से किया गया वादा पूरा किया गया है।
6: इतिहास रचा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जो कहा वो किया। ये वादा किया था दिल्ली के चुनावों में दिल्ली की बहनों से, दिल्ली की माताओं से, और उस दिल्ली लक्ष्मी योजना का वो वादा पूरा किया गया है। लाखों बहनें इसके फॉर्म भर रही हैं और जो उत्साह है बहनों में वो यहाँ दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद के लिए भी बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन है।
2: सत्र के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रूपये की सहायता उपलब्ध होगी। वहीं

0: योजना पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ी योजना है, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।
1: एक बहुत बड़ी योजना जो हमारी बहनों के लिए लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत 2500 रुपया महीना दिया जा रहा है, ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी योजना है और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, दिल्ली के लोगों से वादा किया था, आज हम उसकी बधाई जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, सरकार को देना चाहते हैं। ये एक वो सोच है जो हमारी बहन बेटियों को मजबूत करती है, उनके भविष्य में उनके बच्चों को मजबूती देती है और ये एक वो सोच है जो औरत को आत्मनिर्भर बनाने का बहनों को काम करती है।
0: इस योजना के लिए अब तक 4,57,000 से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है, वहीं लगभग 1,73,000 महिलाओं ने अपने आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा ने भाषणी को सदन की कार्यवाही के दौरान अपने एआई आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया है। इस पहल का उद्देश्य विधायी कामकाज को उचित समय में ट्रांसक्राइब और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की तकनीकी क्षमता का आकलन करना है। ये पहल दिल्ली विधानसभा की उन नई तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दिखाती है जो विधायी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाने में सहायक हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार किए गए हैं। वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में एक सम्मेलन के दौरान इन सर्किट को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सर्किट के माध्यम से पर्यटक दिल्ली की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को कम समय में बेहतर तरीके से देख सकेंगे तथा अधिक दिनों तक ठहरने के लिए प्रेरित होंगे। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संयुक्त देखरेख में होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे।
2: यह आयोजन भारतीय उत्पादों, सेवाओं, एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ने का मंच बनेगा, जहां वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में 1000 से अधिक प्रदर्शकों, 40 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और लगभग 10 लाख आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का उत्सव है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव भारतीय कारोबार को नए बाजार, निवेश और वैश्विक साझेदारियां उपलब्ध कराने के साथ मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। आरजू के साथ समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन भी जब्त किया है। और अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। साथ ही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु हरिकिशन बादशाह के प्रकाश पर्व पर बधाई दी। श्री गुप्ता ने सदन की शुरुआत में कहा कि दिल्ली विधानसभा के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी एआई संचालित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विधायी प्रबंधन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता का आकलन करना है। इसके बाद शून्यकाल में विधायकों ने जनहित के मामले विशेष उल्लेख के साथ उठाए। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सदन को गंभीरता से नहीं लेती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022, 2023 और 2024 में प्रश्नकाल नहीं हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले वर्ष से लोक लेखा समिति उन सीएजी रिपोर्ट की जांच में लगातार कार्य कर रही है जिन्हें पिछली सरकारों के दौरान सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दवा घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। इसके कारण आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद विधानसभा कार्यवाही की सुचारू रूप से शुरू हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन पर पटल पर प्रस्तुत की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के संदर्भ में जारी अधिसूचना और दिल्ली विद्यालय शिक्षा कठिनाइयों का निवारण आदेश 2026 के संदर्भ में जारी अधिसूचना सदन में रखी। इस दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन की अनुमति से दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट निरसन विधेयक 2026 को सदन में प्रस्तुत किया। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। राजधानी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में आज सवेरे से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। दिल्ली में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष पर्यावरण अनुकूल पर्यटन सर्किट तैयार। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने 35 इलेक्ट्रिक ऑटो टिप्पर को झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़ी में शामिल किया। और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। बीजी प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत के इस खास प्रोग्राम में आज मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। इस भीगे मौसम में और कहें कि दिल के जज्बात दिल में ऐसे याद बनकर उमड़ उठते हैं कि आपको हमेशा हर किसी का चेहरा उस बारिश की बूंद में नजर आने लगेगा। कुछ ऐसा ही होगा जब आप इन गीतों को सुनेंगे। तो लीजिए सुनिए ये पहला गीत।

बीमारी। दोस्तों, बारिश का मौसम जो है सिर्फ एक मौसम ही नहीं, ये एक जज्बात है, या यूं कह लीजिए कि जज्बातों का पूरा समुंदर है जो बरसात बनकर बस बरस पड़ता है। कभी यादों की छतरी खोल देता है तो कभी उस गर्म की चाय के प्याले में उस खूबसूरत एहसास को समेटे होता है। और कहते हैं कि जब बारिश की बूंद पड़ती है तो इस मौसम में ऐसा एहसास होता है कि बस पहली जो बूंद गिरी है वो कहीं ना कहीं दिल पर दस्तक देकर निकली है, यादों की दस्तक देकर निकली है। और जब इस झमाझम बरसात में जहाँ पे बारिश ही बारिश हो, हर तरफ पानी ही पानी हो, और ऐसे में अगर कहीं ठिठक कर कहीं दो पल के लिए आप बैठकर संगीत का मजा लें, इन गीतों का मजा लें जो कहीं ना कहीं आपको उन यादों में खोने में मजबूर भी कर देता है, उन प्यारे एहसास को महसूस करने के लिए मजबूर कर देता है ना। आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये अगला गीत।

और इसी खूबसूरत और अंतिम गीत के साथ तरन्नुम जहां को इस कार्यक्रम यानी गीतमाली का कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: के लिए नमस्ते।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले की सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है।

0: लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उसमें निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेसवार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेसवार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार शुरू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य

0: से शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
6: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज़्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashwani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
8: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. Earlier, both the Houses paid tributes to the freedom fighters to mark the 84th anniversary of Quit India Movement. The Lok Sabha also completed its legislative business by passing the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. As both the Houses were adjourned early, the private members' business could not be taken up. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
7: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favoured nation status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India took a number of diplomatic steps, including holding Indus Waters Treaty in abeyance, closing Attari checkpost, restricting visas and downsizing diplomatic and official presence at the respective missions following Pulwama terror attack. Dr. Jaishankar stated that military action targeting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was also undertaken. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers.

11:30 मिनट पर हम हाजिर खिदमत होंगे प्रोग्राम सुर्खियों में के साथ। 11:45 मिनट पर कवालियां नश्र की जाएंगी, फनकार होंगे गुलाम हुसैन खान और हनवा। आलमी खबरें आप शब के 12 बजे सुनते हैं।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है एक फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं फयाज जयपुरी की इस गजल से। गजल सरा है फयाज वसानी।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Siddharth Singh.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर। घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 450 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,600 अंक से नीचे आया। संसद ने भुगतान में देरी तथा विवादों को सुगमता से हल करने के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और भारत ने आईपीओ की संख्या के मामले में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। जुटाई गई धनराशि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की इक्विटी भागीदारी रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई।
0: A quick look at the headlines in English. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO count, ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds FPI's ownership falls to a 15-year low while domestic institutional investors' equity holding reaches a record 17%.

0: So listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब नजर डालते हैं प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 456 अंक यानी 0.6% गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 65 अंक यानी 0.3% की गिरावट के साथ 24,571 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स 0.2% चढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर बढ़ी चिंताओं के बीच बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी नुकसान में कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 456 points or 0.6% to close at 78,499. The Nifty dropped 65 points or 0.3% to settle at 24,571. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.2%, while the small-cap 100 index ended marginally down. Earlier, the markets opened with a gap down as crude oil prices rose amid renewed concerns over the Strait of Hormuz. The Sensex and the Nifty traded with losses throughout the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 6%, बजाज फिनसर्व 4.2% और आईसीआईसीआई बैंक 3.7% गिरा। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में 3.5% की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% चढ़ा, जबकि भारतीय स्टेट बैंक में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: In sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, focused IT advanced over 1.4%, auto rose 1.3%, and hospitals gained over 1.2%. In contrast, financial services dipped over 1.3%, private banks as well as top 10 banks shed nearly 1%, and consumer durables lost 0.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,209 companies declined, 2,044 advanced, and 207 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया मामूली मजबूत होकर 95.21 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। और उद्यम चर्चा की शुरुआत करते हैं आज जो बाजार का रुख रहा, जो प्रमुख घरेलू शेयर बाजार जो है आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 456 अंक जो है सेंसेक्स वो गिरा हुआ है, तो क्या कहेंगे बाजार को किस तरीके से वो दिन आप देखते हैं?
2: देखिए, अगर आप पीछे बाजार का मूवमेंट जिस तरीके से रहा है, अभी भी जो गेन हुआ था, अगर आप निफ्टी देखें, क्योंकि सेंसेक्स में ऐसा लगता है पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो जब गिरता है 300-400 बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर उसको हटा के अगर निफ्टी देखें जहां पे विड्थ भी ज्यादा है उसकी जी। निफ्टी 50, तो आप पाएंगे कि अभी भी ये 24,500 के आसपास है। और बीच में ऐसा एक वक्त आया था जब 24,000 उससे भी नीचे जा रहा था, तो जो रिबाउंड हुआ था, अगर रिबाउंड शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस वो अभी बरकरार है। रिबाउंड का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, 100-150 निफ्टी में गया है, तो वो होल्ड ऑन कर रहा है
1: जी।
2: और उसमें जो इरोजन हुआ है, जो उसमें जो डेंट लगा है, वो तेल के दाम के ऊपर है। उम्मीद की जा रही थी, अभी ग्लोबली है कि उम्मीद की जाती कि हॉर्मोज स्ट्रेट्स के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ताकि वो स्टार्टिंग कंडीशन है, ताकि बाकी वहां पे जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, जिससे एक स्थायी कुछ अरेंजमेंट होगा मध्यपुर में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वो शायद आया नहीं और उसकी वजह से कुछ चिंता है, सोच है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि कच्चे तेल के मार्केट में भी असर पड़ा है। दूसरा है कि अमेरिका में कुछ आंकड़े निकल रहे हैं रोजगार या बेरोजगारी से जुड़े हुए, तो वो आंकड़े इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि क्या फेडरल रिजर्व जो है, जो उनके केंद्रीय बैंक है, क्या वो ब्याज दरों को साल के अंत में बढ़ाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है और मार्केट उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी। ये बताता चलूं कि अभी जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, वो पीछे जो चेयरमैन थे, हेड्स थे, उनसे थोड़ा सा अलग चल रहा है उनका। वो उन्होंने कहा कि हम गाइडेंस नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे। पहले सारे जो चेयरमैन थे वो बता रहे थे कि हमें लगता है ऐसा होगा, तो मार्केट को गाइडेंस दे रहे थे, हैंड होल्ड कर रहे थे। तो इनका ये जो है वॉश, केविन वॉश, उनका मानना है कि ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है गाइडेंस देना।
1: जी।
2: तो फिर तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही सोच के बारे में,
1: सारी अनिश्चितता,
2: हाँ, तो फिर आपकी जो मीटिंग होती है उसके मिनट से आप निकालेंगे, तो आपको जो एक एडिशनल थॉट प्रोसेस है जो आपको क्योंकि देखिए जब अनिश्चितताएं होती हैं तो आप चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है इन्फॉर्मेशन, उसको लेके आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा की जरूरत है। जहां पे आपकी कमी होगी तब थोड़ा सा भी डेटा आएगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आएगा, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाती हैं, ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट रोटेट करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ये जब तक वहां पे, क्योंकि तेल तकरीबन हर आर्थिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है, तो जब तक वो एसेंशियल, इट्स लाइक ब्लड, खून की तरह शरीर में, तो वो जब तक हमें उसके ऊपर एक अंदाजा नहीं हो जाता रक्तचाप, खून में और क्या क्या है, ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये अगर आप हमें अंदाजा नहीं होता है तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। और ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड की तरह नहीं है। तो जब आप हाई रिस्क लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होगा और कन्विक्शन होगा।
1: बिल्कुल, तो मार्केट की जो पल्स है वो ये डिसाइड करेगा।
2: जी बिल्कुल, ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा फिर वो हजम करेंगे, खाने की तरह हजम करेंगे, फिर वो एक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट माइल्स इन्फॉर्मेशन। तो जो इस जो श्रोता है ये उनको मेरा ये कहना है कि ये भी देखने का एक तरीका, कई और जो लोग इस प्रोग्राम में आते हैं वो अलग तरीके से देखते होंगे और वो भी सही है। तो देखने का एक तरीका नहीं होता, कई तरीके से देखा जा सकता है। पर जो अभी जो मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं, जो डायरेक्शन है और जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वो अनफॉर्चुनेटली अफॉर्चुनेटली ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े बिग पिक्चर में वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम क्या ही कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप कंपनी को देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, चार्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर तेल का दाम एकदम से बढ़ने वाला होगा तो उसका आप क्या करेंगे, उससे पहले ही तो सारा चेंज हो जाएगा,
1: असर आएगा।
0: सो जस्ट डू अ लिटिल ज़ूम आउट हियर उदयन, यू नो वी आर इन ऑगस्ट 2026, year started and a lot of uncertainties, lots of predictions for the year came out that this is possible, analysis and information like that. So we're just going past the middle of the year, and there's a range bound activity in the market, and you said that it is moving in a particular range, even responding or reacting in the range. Do you see a jump from this range possible, because now both the wars have been built in, the geopolitics has been built in, and I think there is also an understanding that oil also will have a range to move in?
2: Yeah, that's a very interesting question. So, you know, there are points of time when you draw up a list of what you do not know. So, like a month back, we didn't know how the monsoon was going to be fare. We didn't know what oil was going to fare, how our economy has responded to this this whole development of which we have no role to play.
0: True.
2: And it is not as if it's also happening in a border, it's happening some distance away. Now we know Now, because we know now data is showing that we have been fairly resilient and it's very credit worthy. For all the doomsdayers, all the things that people were saying there, it's just exports are doing okay.
0: So we are holding steady.
2: Yeah, we are holding. So resilience is pretty much guaranteed. Upside will be if some understanding happens. In fact, even the oil prices, there were these doomsday predictions of 150, 200. That didn't happen. So it seems that the whole system is getting used to working, living with this situation, and it at a certain level it's becoming more normal than it was.
0: That's true, like a new normal. Yeah. Right.
1: कुछ और आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज चालू

0: So you'll probably receivables and other things, the framework that's being worked upon, that's very super important. If somebody can actually show that regular receivables is coming, I mean, let's talk about a tea vendor. Okay, so that person may not be able to come up with grand financial statements, but that person can show through UPI inflows that this much is happening. Those loans probably are already happening, but they can be delivered at lower rates.
1: Right.
0: So you know this flow is coming, it's stable, and digitally that footprint is there. Bills are being paid on time. The person is there at a one place. So that unless we fix both these things together, you will not. So you can have a great startup, but that startup,
1: So the ecosystem building.
0: Yeah, so you would need more and more new large companies. Or new small companies, which will become slightly bigger, and then go to IPO. That's how you more investors will go and put in money. And people who have put in money in small enterprises, they get their money out, and they put money in new enterprises. That's how the whole ecosystem works.
1: Right.
0: So this kind of a law, that is the important wheel that it's moving. So it may be at a narrow level it's looking at this, but it's actually a much larger role it's playing.
1: Right.
2: बढ़ते अगली खबर की ओर. भारत के पूंजी बाजारों ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मजबूती और लचीलापन दिखाया है. भारत ने आईपीओ की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि जुटाई गई धनराशि यानी फंड रेज्ड के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा. कल जारी सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नियामक ने कहा कि प्राथमिक इक्विटी बाजार यानी प्राइमरी इक्विटी मार्केट मजबूत बना रहा, हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि में 8.4% की कमी आई और ये घटकर 9.1 लाख करोड़ रुपए रह गई. ये चार वर्षों में पहली गिरावट है. वहीं पब्लिक डेट इश्यूएंस यानी सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों के इश्यूज में लगभग 39% की वृद्धि दर्ज की गई. इसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 14 इश्यूज के जरिए कुल 1,756 करोड़ रुपए जुटाए गए. सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएस की नई व्यवस्था भी शुरू की है. इसका उद्देश्य कीमतों की बेहतर खोज सुनिश्चित करना और भारतीय बाजारों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है. सेबी ने भारत के मार्केट को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस भी शुरू किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की हिस्सेदारी 15 साल के निचले स्तर पर आ गई, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईए की इक्विटी हिस्सेदारी मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 70% तक पहुंच गई. तो उद्यन, यहां पर अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को देखें तो दो अच्छी बातें, आईपीओ की संख्या के मामले में टॉप पर है और दूसरा जो फंड रेज्ड है इसमें भी हम तीसरी पोजीशन पर हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, ये जब पीछे मार्केट्स के बारे में विश्लेषण हो रहा था तो एक कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि देखिए, ये काफी सारी जो कंपनीज हैं वो जो आईपीओ रेज कर रहे हैं वो बेसिकली फॉरेन, उनमें से काफी कंपनीज ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंपनीज हैं, वो आईपीओ रेज करके पैसे भारत से बाहर लेके जा रही हैं
2: जी.
0: तो उसको लेके बहुत हाई तौबा चली कई महीने और कई लेख लिखे गए, कई बोल बोले गए. बट इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे आईपीओ में इंटरेस्ट बरकरार है वहां पे और स्टोरीज भी हैं
2: जी.
0: तो कई बार क्या होता है, जब बारिश हो रही होती है तो फिर मूड थोड़ा सा डाउन होता है, तो फिर कुछ बातें भी वैसी मध्यम मध्यम सी होने लगती है. पर अब हमें ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पे और स्टोरीज भी हैं. एक डिफेंस का सेक्टर है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. फिर आपके स्पेस से जुड़े जो स्टार्टअप्स थे 10 साल पहले वो बड़े होते चले जा रहे हैं और इवेंचुअली वो आके मार्केट्स को टैप करेंगे. तो आप देखेंगे कि एक पाइपलाइन बनती चली गई है और ये आप जब बनाते हैं तो आईपीओ में फंड रेज आपका बढ़ता चला जाएगा. नंबर वन. नंबर टू जो है वर्थ पॉइंटिंग आउट कि डीआईआई का शेयर 17% है. इसका मतलब भारत के जो इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी सबसे पहली बार उसका वर्चस्व ज्यादा हुआ है विदेशियों से.
1: जी, राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, द रिजर्व

0: Bank of India said credit extended by NBFCs, non-banking financial companies, grew by 14.4% year-on-year in June 26, compared to 11.1% a year earlier. According to the RBI, credit to agriculture and allied activities rose 17.9%, up from 5.1% a year ago. Retail loan growth accelerated to 20.3% from 14.3%, driven by strong growth in housing, vehicle loans and loans against gold jewellery. However, credit growth to the services sector moderated to 17.6% from 22.4%, while lending to industry slowed to 6.7% from 10.3%.
1: एक खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में 10.5 अरब डॉलर बढ़कर 692.8 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, जो इस दौरान 8.7 अरब डॉलर बढ़कर 564.6 अरब डॉलर हो गई। देश के स्वर्ण भंडार में 1.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और यह 104.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR 4.80 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.66 अरब डॉलर हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की आरक्षित स्थिति भी 2.80 करोड़ डॉलर बढ़कर करीब 4.8 अरब डॉलर हो गई है।
0: So all this, Udyan, just a brief comment. Good news, progressive news?
2: We are holding on. Let's not forget that RBI had to intervene in the forex market, but still our forex reserves are holding on.
0: Right.
1: और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में सम्मिलित दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% गिरा, जबकि जापान का निकेई 225 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ।
0: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप टुडे एज इन्वेस्टर्स वेट सिग्नल्स दैट गल्फ स्टेट्स एंड ईरान वर क्लोजिंग इन ऑन अ डील टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अंडर अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.8% डाउन एट $81.86 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.3% लोअर एट $77.08 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। Crude oil prices, you'd earlier said we're looking at again range bound here, Udyan?
2: Yeah, I would say so, unless there is the whole situation flares up again. In the short term, we are looking pretty much at that.
0: Right, okay. And as long as it is in this range, good news for India?
2: No, not really. We would like it lower, but we really don't have so much of a choice. But as long as we can manage and we can meanwhile build reserves and stuff like that, the strategic reserves, get on to things like PNG, manage our stuff well, I think we should be okay.
0: Right, right.
1: और अब नजर डालते हैं सोने और चांदी के बाजार पर। सोना 0.8% की तेजी के साथ 1,49,621 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी 2.5% से अधिक के उछाल के साथ 2,31,381 रूपये प्रति किलोग्राम पर थी। तो उदयन, इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं सोने और चांदी के मार्केट को?
2: देखिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को उनकी इंटरेस्ट बनी रहेगी, प्राइसेस आपको मॉडरेट लेवल पे बढ़ते तो रहेंगी जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बने रहेंगे, तो गोल्ड में इंटरेस्ट बना रहेगा और 10% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो थंब रूल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करने का है। और उसकी ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है। आपका अगर रिटर्न्स में अप डाउन हो रहा है, तो गोल्ड एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह आपको पूरा ओवरऑल रिटर्न को एक स्टेबिलिटी देता है, एक स्थिरता देती है।
1: जी बिल्कुल। तो सबकी नजरें गोल्ड पर रहती हैं और आपने जो बताया, और इसी के साथ समय कम है उदयन जी, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और
0: एब्सोल्युटली उदयन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। And a look at the headlines before we close. Benchmark domestic indices fall. Sensex drops over 450 points. Nifty settles below 24,600. Parliament passes MSME Development Amendment Bill 2026 to address payment delays and simplify dispute resolution. And India retains top position in IPO count. Ranks third in fundraising in last fiscal year, highlights SEBI annual report. Adds, FPI's ownership falls to a 15-year low while domestic institutional investors' equity holding reaches record 17%. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने

पासानी और डॉक्टर प्रियंका मोदी और इस नवनी के लिए अंतर की ईमेल आया इंद्रजीत कौर छावड़ा सिटी छावड़ा और रविंदर सिंह छावड़ा का। जबलपुर उदयपुर से तेलंगाना निजामाबाद से शकला बख्श बेगम रबिया शेख शेख रेमुन्ना और मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर अंकित भटकर और गांव नथरा पंजाब से हरजिंदर सिंह जसूर जसी सीता साई और गीता भी। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डनी पवार मनीष पवार का ईमेल हमें मिला और पश्चिम टॉक गंज झुंडवाड़ा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी और फैजुल अलीम सिद्दीकी। खरी बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लाडोकोली मल्होत्रा पापाजी ने आनंद चंद मल्होत्रा। आप दोस्तों की पसंद आपकी नजर।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना फिल्म रेशमी रूमाल से। बागवानगार राजा मेहदी अली खान तर्ज बनाई है बाबुल ने और पसंद किया है आप दोस्तों ने। मनानपुर दादा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। गांधी रोड गंजुंडवारा से मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद और मुन्ने सलमानी। राजमाता नगर बुलडाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े और आकाश कुमार। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंडाल, शब्बीर बनाटी और आसिफ इकबाल। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और कीर्ति अरोड़ा। और पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन। चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द हमारे पुराने साथी और त्रिभुवन नाथ मालवीय। नई दिल्ली राजौरी गार्डन से छोटे से और प्यारे से नाम भावनी और सानवी। और पुरानी बागपत से इलास मुस्कान कुरैशी और रानी कुरैशी। महाराजा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी और नवेद हुसैन अब्बासी। और खाजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू। कुम्हार हेरा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहन हसन और नाजिया इब्राहिम। और टोरवाल नौशहर पंजाब से गगनदीप ठांडी, त्रिपिता कुमारी ठांडी और डॉक्टर प्रियंका ठांडी। आदर्श नगर मौलट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा। सेक्टर 67 मौली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। केतल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। श्रामनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और बीबी प्रियांशी। और जयराज पलोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। दीदार रेडियो लिस्टनर क्लब बिलोराम गेट कासगंज से एम असन सैफी, जबुन्निशा बेगम और सद्दाम सोनी। कोलका बिना छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे और रेखा पांडे। और अजमेर शरीफ राजस्थान से गुनाज हाशमी, सैयद आलम हाशमी और बहू सलमा हाशमी। आतिश रेडियो लिस्नर क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, तहरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा। और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया शिव कुमार चौहान, संकीर्ति चौहान और उत्कर्ष चौहान की जानी से आप बाबा कुटी रायगढ़ से। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

आइए दोस्तों आप सुनते हैं शकील बदायूं ने लिखा ये नगमा जिसकी तर्ज बनाई है रोशनी, आवाज सुमन कल्याणपुर की फिल्म नूरजहां से। मुंतजिर आप सभी दोस्त इस नगमे के। दिलावर खान हसीना बानो और अलीजा नायाब आप हैं रघुवीर नगर से, गांव पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी, और वरुण जलुका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, मिलिंद सरकटे, ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, संबलपुर कंकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और उजस्वी यादव, और असे गांव बाजार से करण रंजित पुनकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, और नूरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव और सोनल प्रसाद यादव, सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानन याले, नवदीप याले और सुशील याले, अकाली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी और साथ में काजल, ऑक्सीजन पार्क रावनगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना गोडाने और हीरामन शिंदे, मोहम्मद यूनिस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और अयुब खत्री चिप्पा कॉलोनी खंडवा से, और इस नगमे के लिए हम तक ईमेल भेजा है आप ही रेखा कामले, रानी कामले और आनंद कुमार कामले, गौरी नगर इंदौर से। पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, ज्योति और अंजिनी, दादाबाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, सावा नवाज और हसन नवाज का भी ईमेल हमें मिला, और आप हैं सुशांत प्रियझा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमार, टिम्बर मार्केट नई दिल्ली से, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राजपाल गजवी, राधिका गजवी और अनिष्का तनमे भी सुनना चाहते हैं इस नगमे को, और पटेली रोड गंजुनवार उत्तर प्रदेश से इम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबिया रीबा और हबीबा, अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे और आरती लोखंडे का ईमेल है भाव साहिब नवथर से, और कृष्णा कलोनी हांसे से सुभाष योगी, सुशील योगी और राजू मिगलानी, गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी लेवाई छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ भाटापारा से हरमिंदर चावला, सोन जोशी और शिव कुमार शर्मा।

0: रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया, और इसी नगमे को पसंद किया भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान और कांता रानी साथ में गुंजन। सामिन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम अभी जारी है, शब के 11 बज चुके हैं। ये वक्त होता है खबरों के बुलेटिन का।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। बरसगीर की खबरों के साथ मैं फुरकान खान। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैन अलावामी समंदर में महफूज और बिना रूकावट जहाजरानी के आजम को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमुई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज़्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज ही मंजूर कर लिया गया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से आजाद माहौल में ही उस्तवार हो सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क एमएफएन का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक एक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजबित करते हैं। भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानियों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन ममालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल रबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइंस फ़ाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की जरूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्पलाइंस पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फ़ाल हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात का इरादा किया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़िश्ता रात की टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में जारी सूरत हाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खसूसी जामिया शराकतदारी है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरबिया के दरमियान दिफाई मुआहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलात पर करीबी नजर रखे हुए है।

अभी आप मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना सुन रहे थे, फिल्म अनजाना से। नगमा निगार आनंद बख्शी तर्ज बनाई थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप दोस्तों ने। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। गांव ही परसों का तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और करिश्मा शेख। बोरवा के नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से ये ईमेल हम तक आया है, नाम दोस्त आपका कट गया। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर और तुषार सिंह। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा। और पलसी जिला बुल्डाना से विजय शोगाकर, शोगोकर रेणु शोगोकार और ऋषिकेश शोगोकार। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नाजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी। काशी निवास नागपुर से भारती प्रकाश रामभरे, वैष्णवी हर्ष रामभरे और जानवी रामभरे। बदलापुर मुंबई से पंडिता सिद्धार्थ गोहांकर, लाडला टुकटुक गोहांकर और घास बाजार बांद्रा लोकल स्टेशन से रेहान मियां शेख, मोहम्मद उमर फाजिल और मोहम्मद फराज शेख। कालना राजस्थान से विक्रम कालावासरा और सचिन, साथ में योगेश कालावासरा। और सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश गुजराती, जैनिश गुजराती, लड्डू कुमारी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना और सोनू तस्नीम। किशन माफ कीजिएगा, किशन सबकाल, आशा सबकाल और सुनिया विशाल सबकाल। आप हैं शास्त्रनगर बीट शहर से। नाला सुपारा मुंबई वेस्ट से मोहम्मद, अच्छा चलिए, बांद्रा अरमा कोट मुंबई ईस्ट से बेगम सोनम शेख, मारिया आयत शेख, मोहम्मद अरीफ शेख। गांव फ्रांसिस सार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और सैलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। फजिल का पंजाब से भूषण खेरा, विशु खेरा और विशाल खेरा का ईमेल हमें मिला। और आप हैं बड़गुरबा पथियारा से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। लाहौडला जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। आनंद राज सागर, तरुलता सागर, चंदखेड़ा अहमदाबाद से। और कल्पना मदन झा, मानव मैंक, आपने पूरा पता लिखा, 27 निर्मल अपार्टमेंट, नरौली फाटक, विराट वापी, गुजरात। मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी, बेटा आयान फारूकी। और छत्तीसगढ़ पथरिया भड़ेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और वन्या सिंगरौल। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन। गांव डागन नवाज जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह। राजपलेक्स मौनत भंजन उत्तर प्रदेश, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। नगर निगम वार्ड 28 नाजिम मंजिल महसूल, सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम शरत अकम, बहु रुबीना वसीम। आप दोस्तों का शुक्रिया। आइए दोस्तों सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना, फिल्म है बाबुल। नगमा निगार शकील बदायूं ने तर्ज बनाई है, नौशाद ने। पसंद किया है आप दोस्तों ने। माफ कीजिएगा, तलत महमूद के साथ हैं शमशाद बेगम। नूर महल मसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज और फरज जहानाज। राहत गांव कैम अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्षा रमेकर और अक्षय रमेकर। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा। और इसी नगमे के लिए ईमेल आया बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी और फातिमा मंसूरी की जानिब से। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अजीत गोहकर राय, श्रीमती सरिता गोहकर और अर्जुन गोहकर डुग्गू। और जगदीश धाकर नायमा, श्रीमती राजूबाई धाकर और युवराज सिंह धाकर, आपका ईमेल है। मालवा रेडियो लिसनर क्लब हिंगड़ी अकोट से। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से संगल शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और शुभ प्रसाद जायसवाल। मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम और भाई कामरान खान। वार्डिंग रोड मंडी डबली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, अमित नारंग और उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी बघेल और साहिल बघेल। लखान पंदरिया छत्तीसगढ़ से धनौड़ी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया का ईमेल। पाकुड़ झारखंड से तुकुमार भगत, श्वेता भगत, किशोर तासु।

आइए दोस्तों सुनते हैं नाद देवता फिल्म से ये दो गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। इस नाटक की मौसीकी तरतीब डीएसएन त्रिपाठी ने पसंद किया है आप दोस्तों ने। इमाम मंजिल बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम, जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम आलम आरा और जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नसरीन जहां और मनज जहां आपने कहा भूल न जाना तो आप तो हमेशा याद हैं। दरबाकुर से के संजीव डागेराव, डॉक्टर रसिका डागेराव और डॉक्टर कुस्तुक डागेराव और शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से संतोष इसकाले, तेजस इसकाले और लोकेश काले और दीपेश्वरा पूनम वर्मा ज्योति का ईमेल हमें मिला पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, ऊंचेगांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल और रंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से आनंदा भगत अरुणा भगत और सुलोचना भगत और विष्णु कॉलोनी सिनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके शुद्र रामटेके शरिया रामटेके और थाना रोड बक्सर से जीत गुप्ता आशीष गुप्ता और सतीश गुप्ता, आवाज विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर तमिलपुर गौर और स्विस आशीष गौर, सलाई सुखना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा रिनु देवी शर्मा और राहुल कुमार शर्मा और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना डॉक्टर अदीबा, यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे धनश्री बुरांडे और उषा बुरांडे, राजनगर गांधी निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता दादा ठाकुर और रुद्र गुप्ता का ईमेल हमें मिला और आप हैं चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी सुदेश जोशी और दीपक जोशी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा मायादेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार ज्योतिष्णा परमार और हर्ष।

और करणवीर हाउस बुजो कैचियावा बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण नगर भोपाल से चंपालाल दुबे आनंद और दर्शित और गिरिडीह झारखंड से सैयद शमा परवीन बाबू सुफियान और अर्शी सुल्तान न्यू मार्केट पटना बिहार से वसीम अकरम सानिया खातून और गुड़िया खातून और इसी नगमे के लिए ईमेल हम तक आया नाला मच्छरट्टा फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से संजू चौरसिया सुरेश चौरसिया और कुशगर्ग चौरसिया सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में

मैंने अभी आप सुन रहे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये दो गाना फिल्म है नाद देवता। इस नगमे को आप दोस्तों ने भी सुनना चाहा। अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक फुल वाले आप हैं नीरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से और जनकपुरी सारनपुर से जॉन डी क्रिस्टो, रोजी डी क्रिस्टो, विलियस डी क्रिस्टो और आसिफ अली

ये दोस्तों आप सुनते हैं सावन फिल्म का ये दो गाना मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज़ में। इस नगमे को सुनना चाहा है आप दोस्तों ने। जवानेकर दुर्ग से आरसी कांवड़े करुणा विपुल कांवड़े और इस नगमे के लिए अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भव्य कुमारी का ईमेल हमें मिला बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कांबड़े दिव्यानी और गणेश कांबड़े फुलंग निजामाबाद तेलंगाना से मोहिद रूमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी चौदह छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नशाद अहमद सिद्दीकी देव हमीद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद सिद्दीकी अस्तुपुरा जिला मौसी मजहर अली अंसारी रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। दोस्तों सुनिए अपनी पसंद का यह नगमा और इस नगमे के साथ ही आज का तालमेल शाद प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाजत।

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تانگنے شاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں۔
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। भारत और इसराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। आज ये रिश्ता केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है। कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इसराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की। साथ ही दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोनों देशों ने दोहराया। इससे पहले फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीति साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था। इस विशेष रणनीति साझेदारी के व्यापक आयामों को समझने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी। वाधवा जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और इसराइल के बीच पहले से ही रणनीतिक साझेदारी थी, ऐसे में अब

0: शीर्ष रणनीति साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बात हुई तो इसकी प्रगाढ़ता और इसको लेकर जो सीरियसनेस है दोनों नेताओं के बीच में, तो क्या इसमें नया जुड़ाव हो रहा है?
1: देखिए, पश्चिम एशिया एक व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले तक एक क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था, लेकिन आज वैश्विक निवेश, डिजिटल संरचना, तकनीकी नवाचार और समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और भारत के लिए ये क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। अब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है और इसलिए है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसराइल आज विश्व के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है। तो आपने खुद ही कहा, जैसे जल प्रबंधन है, कृषि है, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व भर में सम्मानपूर्वक दिखी जाती है। भारत एक विशाल बाजार है, हमारे पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और फिर विश्व में सबसे बड़ी डिजिटल आबादी वाला भारत देश है। तो हमारी जो क्षमता है एक दूसरे के पूरक है और यही साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का भी जिक्र किया, तो भारत इजरायली संबंधों को नई ऊंचाई देने में राजनीतिक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखें, जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर गए थे, उस समय से आज तक दोनों देशों के संबंध में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे के समक्ष आत्मीयता दर्शाई है। निश्चित रूप से कूटनीति राष्ट्रों के बीच संचालित होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं होती, फिर भी जब भी हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं, तो उनके बीच स्थापित विश्वास ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान की है।
0: जी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत और इसराइल के संबंधों की चर्चा अक्सर हम डिफेंस की बात करते हैं, यानी रक्षा सहयोग के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये साझेदारी रक्षा से बढ़कर अब तकनीकी, कृषि है, स्वास्थ्य है, नवाचार तक पहुँच चुकी है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत इसराइल संबंध अब एक बहुक्षेत्रीय साझेदारी का रूप ले चुके हैं?
1: रक्षा सहयोग आज भी भारत इसराइल संबंधों का सबसे सशक्त आधार है, लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में और जो आर्थिक संबंध है वे भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। उसके साथ साथ नवाचार एक नया फील है जिसमें इसराइल विश्वभर में स्टार्टअप नेशन के रूप से जाना जाता है और भारत भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुका है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, साइबर सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी है और उसके साथ साथ जो भी पश्चिम एशिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं भारत और इसराइल के बीच में सामने आई है। इसके अलावा जो जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता का भविष्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसराइल की अपनी प्राथमिकता है और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी भारत और इसराइल के बीच में काफी सहयोग हुआ है। उसके साथ साथ दो और इस कनेक्टिविटी के ऊपर दो बड़े मुद्दे हैं भारत और इसराइल के बीच में। एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जिसको कि हम IMF बोलते हैं और एक I2U2 जिसमें भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो ये दोनों जो हैं इसके चलते कनेक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी चीज उभर के सामने आई है भारत और इसराइल के बीच में, जैसे पोर्ट्स में एक नया आयाम खुला है और पोर्ट में भारत ने हाइफा पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम पूरी इस नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि भारत का एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है
0: जी।
1: उसमें इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसकी भूमिका अहम रहेगी।
0: और नई विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्वांटम टेक्निक्स की बात करें और इस तरह की जितनी भी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उन पर इस समय पूरे विश्व का विशेष जोर है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत और इसराइल की तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए आपको कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं?
1: जैसे कि आपने रिपोर्ट किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI बोलते हैं, उसके अंदर एक क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर और फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिर उन्नत सामग्री

0: समुद्री विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग भविष्य की साझेदारी को मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें तो कोई भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि नवाचार है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, ज्ञान और लचीली आपूर्ति श्रृंखला है, जिसको हम उस तरह से अगर हम देखें तो ये सभी इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है और भारत ब्राजील की साझेदारी इन्हीं आधारों पर विकसित हो रही है। एक ओर भारत के पास विशाल प्रतिभा है और दूसरी ओर इसराइल के पास अनुसंधान है, नवाचार है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट क्षमता है। तो यही परस्पर जो पूरकता हम देखते हैं दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।
1: बिल्कुल, ये साझेदारी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। भारत और इसराइल दोनों वादवाजी आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है?
0: सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आपने जिक्र किया खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध की रोकथाम और महत्वपूर्ण संरचना की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला आ रहा है। भारत और इसराइल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो राडार प्रणालियां हैं, वायु रक्षा प्रणाली है, निगरानी के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक्स है, समुद्री सुरक्षा उपकरण है, सीमा प्रबंधन प्रणालियां हैं, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और इसराइल मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सैन्य प्रौद्योगिकियां आगे आएंगी उनका संयुक्त विकास दोनों देश कर रहे हैं।
1: इस समय पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर हम देखें तो वादबाजी ये अत्यंत जटिल है और भारत के इसराइल के साथ गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अरब देशों और खाड़ी क्षेत्रों के देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किस तरह अपने सभी प्रमुख साझेदारों के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रख सकता है?
0: भारत और इसराइल के संबंधों का विकास वस्तुतः भारत की विदेश नीति के विकास की भी एक कहानी है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन रहा है, वैसे वैसे उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है और यही कारण है कि आज भारत एक ओर इसराइल के साथ अत्यंत घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाए हुए है, वहीं पर दूसरी ओर फिलिस्तीनी जनता की वैध आकांक्षाओं और दो राष्ट्र समाधान अपने दीर्घकालीन समर्थन पर भी दृढ़ता से कायम है। यही संतुलित दृष्टिकोण आज भारत कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक माना जाता है। और यदि हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक बहुत गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और फिर नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार पश्चिम एशिया भी व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले हमने देखा था कि एक क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था, लेकिन अब नए क्षेत्र खुल चुके हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण केंद्र पर उभर रहा है। तो भारत के अतः एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रवासी समुदाय भी है, निवेश भी है और संपर्क परियोजनाएं यूरोप तक पहुंच की नई संभावनाएं खुल गई है। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उठा है।
1: जी, फरवरी 2026 में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया था। आपके विचार में आने वाले वर्षों में भारत इसराइल आर्थिक संबंधों के कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं?
0: हालांकि भारत इसराइल संबंधों रक्षा का सहयोग बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी निरंतर विस्तार हुए हैं। हीरे के व्यापार से आगे बढ़कर पहले बहुत हीरे का व्यापार हुआ करता था, उसके आगे बढ़कर आज रसायन और औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और उच्च तकनीक वाले अनेक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ रहा है। निवेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 3.93 बिलियन डॉलर था 2025-26 में, और उसके साथ साथ 443 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी भारत की, जिसमें श्री अडानी की जो हाइफा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे

0: और इसराइल की तरफ से भी 334 मिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया में निवेश हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और इसराइल ने 4 जुलाई 2026 को एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है उसकी रेटिफिकेशन कर दी है और वो इफेक्ट में आ गया है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट है दोनों तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन तरह की अग्रीमेंट है, उससे निवेश को और ज्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा।
1: जी
0: मुझे लगता है कि जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो ई मोबिलिटी की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इसराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे। और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी और राधा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत इसराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में?
0: अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इसराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का, सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इसराइल भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, भारत को अगर इसराइली की नजर से देखें तो एक बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था है, तो भविष्य में विशाल संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। एक और बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है हमारी जो मोबिलिटी अग्रीमेंट, जिसके तहत अभी तो 20,000 इंडियन वहां पर काम करते हैं, लेकिन एक एडिशनल लेबर प्रोटोकॉल हमने साइन किया है जिसके तहत 50,000 भारतीय नागरिक इसराइल में काम करेंगे और ये 5 साल का एक व्यापक प्रोग्राम है।
1: जी बिल्कुल, माधव जी आपने भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सामईन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। वक्त हो चुका है कवालियों का, तो लीजिए सुनिए गुलाम हुसैन खान और साथियों से कवाली।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं। शब के 12:30 हो चुके हैं। ये वक्त होता है सदाबहार फिल्मी नगमों के प्रोग्राम आखिरी शब का। पेश है चंद सदाबहार फिल्मी नगमे।

0: स्लैम का जायजा लिया और एशियाई यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली मांझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी मुखासमत और तशद्दुद से आजाद माहौल में ही उस्तवार हो सकते हैं। लोकसभा में कल अपने तहरीरी जवाब में डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमल आवरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वजीर खारजा ने कहा है कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सिंध आबी मुआहदे को मुलतवी करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने, वीजा महदूद करने और मुतल्लिका मिशनों में सफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदामात किए हैं। डॉ जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों MSMEs की फरोग तरमीमी बिल 2026 को कल लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोषण के शोर शराबे के बायस खलल पड़ा। अपोषण अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बायस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोषण के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं साल गिरे के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 587 PhD स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा समेत IIT दिल्ली से फारिग होने वाले 3000 से ज्यादा तलबा से खिताब करेंगे। इस बारे में कल नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IIT दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बनर्जी ने कहा कि जनाब मोदी होनहार तलबा में सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इदारे के सबसे बावकार इनामात तफवीज करेंगे। जनाब बनर्जी ने मजीद कहा कि वजीर आजम IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम AI से चलने वाले हाई परफॉर्मेंस सुपर कम्प्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञा का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। सरकर्दा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ग्रुप ने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि वह इस्लामाबाद के नए गैर मुल्की मीडिया फैसिलिटेशन रहनुमा खतूत 2026 वापस ले। ग्रुप ने इन जब्तों को सख्तगीर और जालिमाना करार दिया है और खबरदार किया है कि वह पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फैल रही बेचैनी और अबतरी की कवरेज को सेंसर करेगा। उसने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बैन अक्वामी अखबारों की जानब से पुरान मुजाहरीन के साथ झड़पों के दौरान पुलिस की वहशियाना कार्रवाई और मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने की इत्तला देने के बाद वहां इंतखाबी इसलाह की मांग कर रहे मुजाहिरों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। ये नए रहनुमा खतूत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके में बढ़ती बेचैनी पस मंजर के बाद नाफिज किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि गुज़श्ता कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक एक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल के जवाब देते हुए यह बात कही। मुराद जायसवाल ने वाजह किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड के लेन देन को मुंसवित करते हैं। भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरामों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खत्ते में भारतीय मिशन उन ममालिक में जहाजरानी की वजारत और समुद्री हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मजीद की जरूरत हो तो वो उन तक मदद हासिल कर सके। ये हेल्पलाइन پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل فعال ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ نیویگیشن اور آزادانہ تجارت کے لیے زور دیتا رہا ہے. بھارت نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ شہری ڈھانچے اور غیر فوجی بحری جہازوں اور جہاز رانوں کو نشانہ بنانے سے گریز کریں گے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پریس کانفرنس متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جائسوال نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت کا اس تقریب میں کوئی کردار نہیں تھا. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان گزشتہ رات کی ٹیلی فون بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ فون اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ خصوصی جامع شراکت داری ہے. ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جائسوال نے کہا کہ بھارت اس صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جائسوال نے کہا کہ بھارت ان معاملات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. ترجمان نے کہا کہ بھارت افریقہ فورم چوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے. دونوں ممالک موزوں تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں کہ یہ چوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے. برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ کل بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظاموں کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے. بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. اس دوران بھارتی وفد کی قیادت بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کی، جبکہ سری لنکا کے وفد کی قیادت بندرگاہوں، شہری ہوا بازی اور توانائی کے وزیر انورا کروناتھیلاکی نے کی. بجلی کی وزارت کے مطابق دونوں وزیروں نے مجوزہ بھارت سری لنکا ایچ وی ڈی سی انٹر کنیکشن اور سینک پور شمسی بجلی پروجیکٹ سمیت جاری دو طرفہ پہلوؤں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. ازبکستان کی راجدھانی تاشقند میں نوجوانوں اور جونیئر ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار شروعات کی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر تتری ماجی نے 45 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے اسنیچ میں 65 کلو گرام اور کلین اور جرک میں 80 کلو گرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے کل 145 کلو گرام وزن اٹھا کر تمغہ اپنے نام کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے. سرکردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے. بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے. بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبکستان میں خواتین کے 45 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، شب کا ایک بجہ چاہتا ہے. اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشرات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. پردھان منتری نریندر مودی آج بھارتیہ پرودیوگک سنستھان IIT دلی کے 57ویں دیکشانت سماروہ میں شامل ہوں گے. سماروہ میں سناتکوتر اور 587 PhD شودھارتھیوں سہت 3000 سے ادھک ودھیارتھیوں کو اپادھیاں پردان کی جائیں گی. پردھان منتری IIT دلی کے سونی پت پریسر میں استھاپت آرٹیفیشل انٹیلیجنس آدھارت اچھ پردرشن سپر کمپیوٹنگ سویدھا پرم پرگیا کا بھی ادگھاٹن کریں گے. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सहकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण वार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उसपे निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह की 12वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस की ओर से उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री अलेक्सी गुरुदेव ने की। बैठक में दोनों देशों ने उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक, अंतरिक्ष, रेलवे, खनिज, खनन, उर्वरक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रूस के SJ-100 विमान के निर्माण और विमान इंजन तकनीक में सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत की। बैठक में लिथियम, दुर्लभ खनिज, एल्यूमिनियम, खनन उपकरण और उर्वरक आपूर्ति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, वहीं आदि नुतंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again failed.

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म भक्त सूरदास से खुर्शीद की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म किस्मत से अरुण कुमार और अमीर बाई की आवाज में।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन के अंडमान और निकोबार दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन श्री राधाकृष्णन श्री विजयपुरम स्थित सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, वीर सावरकर की कोठरी का दर्शन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सहकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास

0: या उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया है। इस समूह की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से नदी, पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव समय समय पर नदी सफाई और सुधार कार्यों की समीक्षा करेंगे और सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा शिकायत तंत्र बनाने का निर्देश दिया जिससे लोग नदी प्रदूषण या पर्यावरण से जुड़े मामलों की आसानी से शिकायत कर सकें और उन पर जल्दी कार्रवाई हो सके। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। यह प्रतियोगिता 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उसपे निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध

0: नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान NUCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन 16 और 17 सितंबर को न्यू टाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे। डॉ चक्रवर्ती ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बंगाली भाषा में विज्ञान को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य से बाहर गए प्रतिभाशाली छात्रों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में योगदान दे सकें। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया जबकि श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुरा करुणथिलाके ने किया। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। छोटे व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश में ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha has passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said, India withdrew most favored nation, MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this thing during media briefing in New Delhi yesterday, adding, that Indian missions all across the Gulf region are

गजल गीत के इस प्रोग्राम में मैं तरन्नुम जहां आप सभी का इस्तकबाल करती हूं, उन सुनहरी यादों को जीने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं इन खूबसूरत गजलों को। और इस फहरिस्त में आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई एक गजल।

0: 来来来，不要再来，不要再来。
1: पेश कर रहा हूं, ये एक ऐसे शायर हैं जो वैसे अरब हैं, कुवैती हैं, लेकिन उनकी तालीम अलीगढ़ में हुई है। उर्दू शायरी का काफी शौक है उन्हें। खालिद उनका तखल्लुस है।
2: खालिद ये हकीकत

दुनिया से के छुरे चलती है, जिबा करनी

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गजल की।
1: आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार थे सुधा रघुनाथन, नुकला चिन्ना सत्यनारायण,

AIR लाइव न्यूज 24/7 पर आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एस गोपाल कृष्णन का बांसुरी वादन राग आभेरी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आपने सुना एस गोपाल कृष्णन का बांसुरी वादन राग आभेरी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026, सुबह के 4:53.44 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें और देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वररंजनी का समय रहेगा 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय है 6:10। इसके बाद आप सुनेंगे एक चिंतन और रामचरित मानस की अगली कड़ी। कार्यक्रम संगीतिका, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक के गाए कुछ भजन। गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45। 9:15 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम धरती आकाश मिट्टी दी महक, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। इसके बाद हम आपके लिए प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम 10:10 पर। सबरस, इस कार्यक्रम का समय है 11:10 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी का समय है 11:30। 12:10 पर आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम घर आंगन, कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोपहर 1:10 पर आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको फिल्म हकीकत के कुछ गीत सुनवाएंगे।

0: कार्यक्रम एक ही कलाकार 2:30 पर आप सुन सकेंगे। और आज के कलाकार हैं असित सेन, दिनेश ठाकुर, ब्रज माधुरी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:00। 3:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे नाटक पार्वती गिरी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का समय रहेगा 4:20 पर। कार्यक्रम परिक्रमा का समय रहेगा 4:30 पर। 5:10 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। इसके बाद 5:30 पर दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की प्रस्तुति रहेगी। छह बजकर 10 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम चहल पहल और 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अवयोग करें। इसमें आज जानकारी लीजिए अर्ध मत्स्येन्द्रासन की।
1: निर्गुण आरे पाल दा पाई देन थावे था रिजक संभाहे सास सास पाई बूढ़ा जाका ना जिस गुर साचा पेटी है पाई पूरा तिस करमा तिस बिना घड़ी ना जीव है पाई सर्ब कला भरपूर सास गिरास न विसर पाई देखो।

नानक तिस शरणागति पाई जे किल दुख काटण हार। धन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई जे किल विख काटण हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब जग जिन्हें उपाया पाई करण का

ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵਥ।

प्रीत नारायण लागी।

0: राम क्रीम गलाती जा ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत है मेरी माए सतगुरु ने
1: पाया
0: सहज से
1: मनोज
0: राग रतन पर

केश दान रहत दान विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा वाहे गुरु।

ਸਤਿਮਾ ਤੇ ਸਾ

ਓੜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

তরাজু তলিয়ে সব হয়ে অপরাধী দুনা নিবে জনতা মৃগা।

ਲੋਟਨ ਬੁਰ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮ ਸਭ ਕਟਨੇ ਜੋ ਪਰਮੰਤ।

ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ